हौसले और इरादों की कोई कमी नहीं किसी के पास। हौसले और इरादों की कोई कमी नहीं किसी के पास, पर सफल सिर्फ चंद लोग ही होते हैं। करते हैं जो लगातार प्रयास, इरादे अक्सर उन्हीं के सफल होते हैं। रख कर हौसले, करते रहो दिन रात काम। रख कर हौसले, करते रहो दिन रात काम। सिर्फ हौसले रखने से नहीं मिलते हैं मुकाम। 5:37 हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

थोड़ी तहजीब से बात किया कीजिए हर किसी से, थोड़ी तहजीब से बात किया कीजिए हर किसी से, क्योंकि हर समय बदतमीजी आपकी परवरिश पर सवाल उठाती है। 5:45 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिन के इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश शामिल हैं। इनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोबो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकन हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रुसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में शामिल होंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेइरा कल रात नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई अन्य देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें कर सकते हैं। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, 12 खंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सामान्य रूप से चलेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन, संग्रहालय और अमृत उद्यान बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया कि शनिवार को होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। दोनों के बीच सामाजिक विकास, सिंचाई, सहकारिता, प्राकृतिक खेती, मोटे अनाज और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य साझेदारी को मजबूत करने और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। श्री नड्डा ने तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और लोगों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर लगातार काम कर रहा है। सत्र में भारत को संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के 3रे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना आवश्यक है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंगड़ी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई।
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्ने हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
1: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9।
0: इट्स नॉट जस्ट फूड,
1: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन।
0: जश्ने हैदराबाद।

अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा। हैदराबाद तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगा बन रही, कंपनियां खोल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोडा, फ्लाईओवरा और ब्रिजा बनाते जा रहे। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंटा भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादियां हैं कि सुन रही नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियां नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियां चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतजार करते रहते। बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियां चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया ने तो गांधी को पहुंच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत जरूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो।

अबिन्तीन अल्फाज के साथ इट्स अ हॉट फ्राइडे मॉर्निंग द सन ब्लेजिंग ओवर आर सिटी बट हियर ऑन रेनबो एफएम 101.9 वी ब्रिंग यू कूल वाइब्स टाइमलेस मेलोडीज एंड स्टोरीज दैट मेक एवरी सॉन्ग शाइन ब्राइटर। ये है नमस्ते हेलो आदाब, एक महफिल जहां सुरों के साथ साथ चलती है कहानियों की बारात। दोस्तों, गर्मी चाहे जितनी हो लेकिन दिल को ठंडक मिलेगी इन गीतों के सफ़र में। तो चलिए सुरों का जो आगाज़ है वो हम करते हैं और आज हम आपको लिए चलते हैं कुछ पुराने गीत और कुछ नए, और इसका हसीन इम्तिजाज आपको देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून एंड स्टे टुगेदर। आई एम योर रेडियो मैन एंड वी आर ऑल रीचिंग टू यू थ्रू द एयरवेव्स ऑफ 101.9। आई विल हिट द ट्यून्स विद द इटर्नल फ्लेम दैट इज बर्निंग डीप इनसाइड अस एंड दिस टाइम इट्स बाय बैंगल्स। देयर वी गो।

0: ऑल राइट, वेरी वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग। नमस्ते लो आदाब, में आप सुन रहे हैं कुछ खूबसूरत नगमे जो हम आप तक लेकर आए हैं। सो वी हैव स्टेप्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ द सिनेमा वेयर म्यूजिक इज़ नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट बट आल्सो फिलोसफी, जहाँ पर सॉन्ग्स एक आईने की मानिंद है, जहाँ हमें दिखाई देते हैं हमारे खुद के ऐसे किरदार जो उमूमन हम नहीं देखना चाहते। द पाथ्स दैट वी टेक, द इमोशंस दैट वी कैरी, सो वी आर एबल टू रिविजिट टुडे गुलजार्स मास्टरपीस आंधी, इस मोड से जाते हैं। अ सॉन्ग दैट स्पीक्स ऑफ क्रॉस रोड्स, ऑफ लव, डेस्टिनी एंड बिटर स्वीट जर्नी ऑफ लाइफ। 1975 का ज़माना, गुलजार ने डायरेक्ट किया था, पॉलिटिकल ड्रामा है, इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रॉन्ग एम्बिशियस वुमेन प्लेड बाय सुचित्रा सेन, और हुज मैरिज सफर ड्यू टू हर पॉलिटिकल करियर। संजीव कुमार प्लेज हर हस्बैंड, अ सिंपल होटलियर। द फिल्म वॉज कॉन्ट्रोवर्शियल एट रिलीज विद पैरेलल्स ड्रॉन टू देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, बट इट इज़ रिमेम्बर्ड टुडे फॉर इट्स सेंसिटिव पोर्ट्रेल ऑफ रिलेशनशिप। है ना कमाल की बात। तो म्यूजिकल ब्रिलियंस की अगर बात की जाए तो इस गाने में आपको देखने को मिलेगा, द कंपोजिशन इज बाय आर डी बर्मन, अ मेलोडी इज सॉफ्ट, लिफ्टिंग एंड डीपली इंट्रोस्पेक्टिव। कई जगह आपको देखने को मिलेगा स्वर मंडल है, वाइब्राफोन है, तबला है, सितार है, हिंदुस्तानी मौसीकी की एक बड़ी शाख वहाँ पर देखने को मिलेगी। एंड लता मंगेशकर से एथरियल वॉइस, किशोर दास इमोटिव टोन, एडेड डेप्थ एंड बैलेंस। तो गुलजार के बोल हैं और इतनी खूबसूरत अंदाज से उन्होंने लिखा है कि इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज़ कदम राहें, इवोकिंग द इमेजरी ऑफ लाइफ्स एट क्रॉस रोड्स। है ना फिलोसॉफिकल बात। दरअसल गुलजार वॉज इंस्पायर्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेमस लाइन्स अबाउट रोड्स डाइवर्जिंग, वीविंग देम इन टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो कहीं ना कहीं एक मिलन है, समझिए, वेस्टर्न पोएट्री और इंडियन पोएट्री का। द सॉन्ग इज़ अ मेटाफॉर, मोड़ का मतलब होता है टर्न, और सिम्बॉलिकली अगर देखेंगे तो जिस किस्म से हम अपने चॉइसेस बनाते हैं, एंड दे आर ऑल यू नो डिस्पाइट पोलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सीज, दी फिल्म्स म्यूजिक वॉज यूनिवर्सली अक्लेम्ड एंड रिमेन एवरग्रीन। सब इस मोड़ से जाते हैं तो हम भी एक मोड़ पर हैं, एंड वी वुड लाइक टू यू नो टेक अनदर मोड़ और आगे बढ़ते हैं FM रेनबो 101.9 पर, बिकॉज एवरी सॉन्ग वी प्ले इज़ अ स्टोरी एंड एवरी स्टोरी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ इटसेल्फ। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में रहेंगे। नमस्ते, हेलो आदाब, में कुछ और अन्य गाने। स्टे ट्यून एंड स्टे अलाइव।
1: हे देयर, डू यू अग्री

ऑल राइट, वेरी इंटरेस्टिंग सॉन्ग. एंड बेखुदी में जो सनम उठ गए जो कदम, एंड हसीना मान जाएगी. 1968 वाली फिल्म थी जिसे प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया था, शशि कपूर और बबीता की. खूबसूरत लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी रही है. और द फिल्म वॉज ऑल्सो नोन फॉर इट्स ब्रीजी स्टोरी टेलिंग, स्टाइलिश प्रेजेंटेशन और साउंड ट्रैक ऐसा कि आपको लगे कि यूथफुल एनर्जी से भरपूर है. बेखुदी में सनम इज पिक्चराइज ऑन शशि कपूर, फिर बबीता, फिर शोकेसिंग उनका प्लेफुल केमिस्ट्री. द सॉन्ग मूड इज़ फ्लर्टियस येट इनोसेंट, रिफ्लेक्टिंग द केयर फ्री रोमांस. है ना कमाल की बात. मोहम्मद रफ़ी ने इसे गाया, उनकी आवाज़ में इतनी खूबसूरती, चाम और एनर्जी थी कि बयान नहीं कर सकते. साथ ही साथ लता मंगेशकर ने भी उनका साथ दिया और कल्याण जी आनंद जी ने इस गाने को कंपोज किया. उनके ऑर्केस्ट्रल अरेंजमेंट बहुत ही कैची रिदमिक रहे हैं. तो सॉन्ग में अपबीट टेम्पो है, मेलोडी भी है, इंस्टेंट पॉपुलर बनने के पूरे सिम्टम्स नज़र आते हैं. चाहे वो कॉलेज गोइंग यूथ होने दीजिए उस ज़माने में, 60s या लेट 60s का दौर, फिर या फिर दूसरे नौजवान, सभी को गाना पसंद आया था. कमर जलालाबादी ने इसके बोल लिखे थे. और एक बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, एक पोएट्री है जो लव एंड लूज

एंड कंट्रोल के बारे में एक खूबसूरत अंदाज से बात करती है। द फिल्म म्यूजिक वॉज टर्निंग पॉइंट फॉर बबीता। शशि कपूर का यूथफुल चार्म और भी ज़्यादा बढ़ गया था, है ना कमाल की बात। तो चलिए, हसीना मान जाएगी के बाद हम रुख करते हैं गांव की तरफ, और गांव का जो माहौल है वो ज़्यादातर आपको इमेजिनेशन की तरफ खींच कर लेकर जाता है। तो सुनते हैं यशुदास का ये खूबसूरत सब गीत आपके लिए आ रहा है। सो शायद यशुदास के गीत के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, तो हम उस वक्त तक घर की तरफ रुख करते हैं और सुनते हैं ये आपकी आंखों में कुछ।

वेल, दिस इज़ रियली इनक्रेडिबल जेम ऑफ अ सॉन्ग। आपने अभी ये गाना सुना हमारे इस खूबसूरत शो में जिसका नाम है नमस्ते लो आदाब घर। नमस्ते लो आदाब में हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे नगीने, कुछ ऐसे नगमे जो आपके सर का ताज बन जाए वो प्रस्तुत करें। इट्स फ्राइडे एंड इट्स फ्राइडे मॉर्निंग, लिटिल हॉटर देन द यूजुअल सितंबर फ्राइडे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमें लग रहा है कि शायद मौसम ने हमारे साथ बड़ा खिलवाड़ किया है। सितंबर के 11 दिन में बमुश्किल कुछ बारिश हुई है और वी विल ट्राई टू टर्न दिस यू नो द गोल्डन एरा ऑफ 1970s इनटू वेयर लता एंड किशोर बेसिकली ट्राइंग टू क्रिएट दैट मैजिक दैट स्टिल लिंगर्स इन आवर हार्ट्स। सो वी विल बी एबल टू रीविजिट सम ऑफ दीज सॉन्ग्स। जहाँ बारिश नहीं हो रही है वहाँ पर कम अज़ कम हम कुछ अच्छे नगमों से गुजारा कर सकते हैं। आपकी आंखों में कुछ फ्रॉम द मूवी घर। घर 1978 की फिल्म थी जिसे मोनिका चैटर्जी ने डायरेक्ट किया था। विनोद मेहरा और रेखा की सेंसिटिव स्टोरी है। यंग कपल ट्राइंग टू यू नो कोप अप विद द ट्रामा ऑफ रेखा'स कैरेक्टर सफर अ ब्रूटल असॉल्ट। द फिल्म वॉज बोल्ड फॉर इट्स टाइम, डीलिंग विद रिकवरी, रिजिलियंस, ट्रस्ट एंड हीलिंग पावर ऑफ लव। और सॉन्ग का जो प्लेसमेंट है आपकी आंखों में कुछ कम्स एट अ टेंडर मोमेंट इन द फिल्म वेयर द कपल ट्राइज टू रीडिस्कवर इंटीमेसी एंड अफेक्शन। द सॉन्ग इज ऑल्सो जेंटल पेस, रोमांटिक विजुअल्स हेल्प सॉफन द अदरवाइज इन इंटेंस नैरेटिव। तो आर डी बर्मन की मौसीकी, किशोरदा लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज़ें और गुलजार के बोल बहुत ही खूबसूरत पावरफुल और रेखा की परफॉर्मेंस को काफ़ी अप्रिसिएशन मिली, काफ़ी पिजराई मिली और फिल्म का जो साउंड ट्रैक है उसके लिए भी काफ़ी आर डी बर्मन को सराहा गया। और गुलजार के बोल इतने खूबसूरत है कि मेटाफोर है, आँखों का है, फैसिनेशन है और बिना कहे ही कुछ ऐसे अल्फाज आ जाते हैं जो सब कुछ एक साथ बांध देते हैं। सो टुगेदर दे हैव क्रिएटेड दिस। So as the sun blazes outside, so let this song be your shade and gives you some comfort. तो 9:40 हमारी स्टूडियोज की घड़ी फिलहाल बता रही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि हमने कहा था कि चित चोर का गाना यशुदास की आवाज़ में आपके लिए।

0: All right, so more and more nostalgic moments that we are trying to rediscover here. Some songs are not just tuned, they are the postcards from the villages, carrying the fragrance of the fields and the innocence of love, beauty, and tradition. So revisit one of such gems from Chitchor, Gori Tera Gaon Bada Pyara. ऐसा गाना जो हमारी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य पैदा कर देता है जो कंट्री साइड में म्यूजिक को और एक रिमाइंडर है कि द चार्म ऑफ सिंपल लिविंग इज अनमैच। चिचोर 1976 की फिल्म थी, बासु चैटर्जी ने जिसे डायरेक्ट किया था, अमोल पालेकर और जरीना वहाब ने मुख्य भूमिका में काम किया, बल्कि द स्वीट स्लाइस ऑफ लाइफ रोमांस एंड द फिल्म वॉज पार्ट ऑफ चैटर्जीज मिडिल क्लास और मिडिल सिनेमा वेव। वेरी रियलिस्टिक, हार्ट वार्मिंग और जिंदगी की जो ताने बाने हैं, रोज़मर्रा की जो जिंदगी है, लोग हैं, उनसे मुंसलिक, उनसे जुड़ी हुई ये कहानियाँ थी। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, पिक्चराइज ऑन अमोल पालेकर एंड जरीना वहाब, और गांव की खूबसूरती नज़र आती है, मामूली से मकान और इनोसेंस, बेपनाह, एक रूरल सेटिंग है। अगर आप म्यूजिकल ब्रिलियंस की बात करेंगे तो केजी येसुदास ने, जो कि क्लासिकल ट्रेन सिंगर है, उन्होंने सोलफुल डेप्थ के साथ इस गाने को डिलीवर किया। रविंद्र जैन की खूबसूरत मौसीकी थी जो कि इट्स अ ब्लेंड ऑफ इन्फ्लुएंसेस विद सिनेमैटिक ऑर्केस्ट्रेशन। द ट्यून इज़ वेरी जेंटल, इट्स लाइक अ रिवर फ्लोइंग, इवोकिंग द सेरेनिटी ऑफ द विलेज। रविंद्र जैन खुद एक लिरिसिस्ट भी हैं, तो उन्होंने ये गाना भी लिखा और ये लाइन एक बड़ी आइकॉनिक लाइन बनकर रह गई। चिचोर वॉज वन ऑफ द फिल्म दैट सीमेंटेड अमोल पालेकर इमेज एज द कॉमन मैंस हीरो। जरीना वहाब ने भी काफ़ी अपनी अदाकारी से लोगों का मोह जीता, दिल जीता, और फिल्म की म्यूजिक बहुत ही शानदार है ना। नमस्ते, हेलो आदाब। मैं हम यहाँ पर कुछ ऐसे नगमे आपके लिए चुन कर लाए हैं जो कि 70s और 80s और कुछ 60s के भी गाने हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और वी विल नाउ टर्न आर टेबल टू फ्रॉम हिंदी टू वेस्टर्न म्यूजिक। दिस टाइम वी आर ब्रिंगिंग जॉन लेनन एंड पॉल मैकार्टनी, लेट इट बी द बीटल्स।
1: Yeah. This is gonna knock you out, boy. When I

मैंने रुदास का यह खूबसूरत नगमा आपने सुना। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक न्यूज़ हेडलाइंस के लिए। हम आपको लिए चलते हैं हमारे हैदराबाद के प्राइमरी चैनल की तरफ और फिर लौट कर आएंगे। तो नमस्ते, हेलो, आदाब। का सफ़र जारी रहेगा। स्टे ट्यून एंड स्टे टुगेदर।

ऑलराइट साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस तीन अल्फाज वाले शो। नमस्ते, हेलो, आदाब। आई एम जस्ट एक्सटेंडिंग दीज ग्रीटिंग्स टू यू। नमस्ते, हेलो और आदाब। मैं हूं आपका रेडियो मैन और हमने आज की महफिल सजाई है जुमे के दिन। आज इस दोपहर ऑलमोस्ट, क्योंकि मौसम जो है वो काफ़ी ख़राब हो गया है, क्योंकि 11 बज रहे हैं लेकिन दोपहर का मौसम लग रहा है। धूप बड़ी चिल्लाती हुई कह रही है कि कहीं ना कहीं से बारिश करवा दो, तो बारिश तो हो नहीं रही है फिलहाल। मौसम विभाग ने भी खामोशी छाई रखी है। तो आज जुमे का दिन है, तो लीजिए शुरुआत करते हैं हमारे शो की। और नमस्ते, हेलो, आदाब में जुम्मे ये गाना अभिजीत की आवाज़ में आ रहा है। मैं हूँ आपका रेडियो मैन एंड यू आर ऑल ट्यून टू दिस वंडरफुल स्टेशन आकाशवाणी हैदराबाद ऑन FM 101.9 MHz।

ऑल राइट दोस्तों, जब हम 90s के दौर में कदम रखते हैं, वी आर स्टेपिंग बैक इन टू द एरा ऑफ अर्ली 90s, एंड दैट्स द बॉलीवुड ब्रिमिंग विद यूथफुल एनर्जी, रोमांस और अनफॉरगेटेबल मेलोडीज, है ना? कमाल की बात। तो आज जो हम रिविजिट करेंगे कुछ ऐसे 90s के बेहतरीन नगमों की तरफ। हमने घर छोड़ा है, दिल फिल्म से गाना था, ट्रैक दैट स्टिल रेजोनेट्स विद एवरीवन हु हैज स्टेप्ड इनटू द वर्ल्ड चेजिंग ड्रीम्स एंड डिस्कवरिंग द लव। दिल जो है वो 1990 की फिल्म थी, जिसे डायरेक्ट किया था इंद्र कुमार ने। आमिर खान और माधुरी दीक्षित की बेहतरीन फिल्मों में ये एक मानी जाती है। द फिल्म वॉज मैसिव हिट, सीमेंटिंग बोथ एक्टर्स एट सुपर स्टार्स ऑफ द 90s, एंड इट टोल्ड द स्टोरी ऑफ यंग लवर्स, डिफाइन पेरेंटल ऑपोजिशन, अ थीम दैट स्ट्रक अ कॉर्ड विद ऑडियंस अक्रॉस इंडिया। हमने घर छोड़ा है कम्स एट अ क्रूशल पॉइंट वेयर यंग कपल लीव्स बिहाइंड द कम्फर्ट ऑफ होम टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लव एंड लाइफ टुगेदर। इतना आसान नहीं है। द सॉन्ग ब्यूटिफुली कैप्चर्स द मिक्स ऑफ एक्साइटमेंट, फियर, डिटर्मिनेशन एंड वॉट नॉट। अनुराधा पौडवाल की खूबसूरत आवाज़, साथ ही साथ उदित नारायण, और क्या चाहिए, इतनी बेहतरीन आवाज़। आनंद मिलन ने कंपोज किया 90s का ये खूबसूरत मेलोडियस रोमांटिक नंबर। समीर के बोल थे, और हमने घर छोड़ा है, रास्ता चुना है, एक्सप्रेसिंग द करेज ऑफ लिविंग बिहाइंड द फेमिलियर, है ना? तो दिल जो थी असल में बॉक्स ऑफिस की एक बड़ी फिल्म थी 1990s की, और उसका ह्यूज कलेक्शन आया था आपके गानों की वजह से भी, क्योंकि उसकी जो मौसीकी थी वो टॉप सेलिंग कैसेट्स थी उस ज़माने में, और यूथ, स्पेशली कॉलेज यूथ के लिए एक बड़ा, एक वेल्थ ऑफ सॉन्ग्स कह सकते हैं उस वक्त था। तो दिल मार्क द बिगनिंग एंड द डोमिनेंस ऑफ दी 90s एरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 80s के बाद 90s के दौर को ही हम ज़्यादा संवारेंगे इस एडिशन ऑफ नमस्ते हेलो आदाब में। मैं हूँ आपका रेडियो मैन। हमारा जो अगला नगमा आ रहा है वो है कुमार सानू की आवाज़ में आशिकी फिल्म से ये गाना।

आशिकी 1990 की फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किया था महेश भट्ट ने, राहुल रॉय और अनु अग्रवाल की जोड़ी। द फिल्म वॉज अ सरप्राइज ब्लॉकबस्टर, रिमेंबर्ड एज मच फॉर इट्स म्यूजिक एज फॉर इट्स स्टोरी ऑफ लव एंड स्ट्रगल। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द 90s म्यूजिकल रोमांटिक वेव इन बॉलीवुड। एक सनम चाहिए पिक्चराइज ऑन राहुल रॉय एक्सप्रेसिंग यीनिंग फॉर ट्रू लव, द सॉन्ग सिंप्लिसिटी सिंसियरिटी एंड एवरीथिंग। Sung by Kumar Sanu and the voice became synonymous with romance in the 90s. Nadeem Shravan ki jodi, the duo who redefined Bollywood music with their melodious, heart-tugging composition. The orchestra were very soft, gentle, minimal, and phir uske baad de itni khubsurat dil se nikli hui emotive awaaz to shine. Kumar Sanu. Sameer ke bol the, एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, कैप्चरिंग द यूनिवर्सल डिजायर फॉर कंपेनियन एंड ऑल्सो लव। द साउंड ट्रैक वॉज फिनोमिनन क्योंकि इतने ज़्यादा कॉपीज बिके, 20 million कॉपीज, मेकिंग इट वन ऑफ द हाइएस्ट सेलिंग बॉलीवुड एल्बम्स फॉर एवर। एंड कुमार सानू को फिल्म फेयर अवार्ड से भी बेस्ट प्लेबैक सिंगर से नवाजा गया, और फिर उसके बाद जो सक्सेस उन्हें मिली वो काबिल तारीफ है। तो राहुल रॉय की मैच जो गिटार लेकर फिल्म के पोस्टर्स, फिर आधा कोट कोट के दरमियान दो लोग, सिंबलाइजिंग रोमांटिक हीरो ऑफ 1990s, है ना कमाल की बात। एफएम रेनबो 101.9 पर आप 90s के दौर के कुछ खूबसूरत नगमे आज इस फ्राइडे जुम्मे के दिन सुन रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और ही ऐसा खूबसूरत नगमा, और इस बार अभिजीत और साधना सरगम की आवाज़ में। आज का गुंडा राज फिल्म से ये गाना।

90s के दौर में ये गाना जो हर एक के मुंह और अल्फाज बल्कि लबों तक आ गया था, बिकॉज द ट्रैक दैट बिकम द हार्ट बीट ऑफ द यंग लव इकोइंग थ्रू द कॉलेज कैंपसेस, कैसेट प्लेयर्स वर बीमिंग काउंटलेस हार्ट्स अक्रॉस इन

ऑल राइट दोस्तों, एक बार फिर से आपको याद दिला दें, आपने अपने रेडियो सेट्स पर ट्यून किया है हमारा ये खास शो जिसका नाम है आपके नमस्ते हेलो आदाब। सो ऑन दिस ब्लेजिंग फ्राइडे मॉर्निंग एंड दैट वाज आज का गुंडा राज डायरेक्टेड बाय मुरली मोहन राव स्टारिंग चिरंजीवी मीनाक्षी शेषाद्री। इट वाज अ हिंदी रीमेक ऑफ द तेलुगु हिट फिल्म कॉल्ड गैंग लीडर। द फिल्म ब्लेंडेड एक्शन रोमांस कॉमेडी एंड चिरंजीव्स कैरिज्मा एट द सेंटर। तोता मेरी तोता मैं तो तेरी हो गई इज अ प्लेफुल रोमांटिक नंबर पिक्चराइज ऑन चिरंजीवी एंड मीनाक्षी। संग बाय अभिजीत एंड अलका याग्निक एंड कंपोज बाय बप्पी लहरी एंड रिटन बाय अनजान। एंड द फिल्म साउंड ट्रैक वॉज वन ऑफ बप्पी लहरीज लास्ट बिग हिट्स इन द अर्ली 90s बिफोर द राइज ऑफ द न्यू कंपोजर्स लाइक नदीम श्रवण। Abhijit was still establishing himself and Chiranjeevi's presence in Hindi cinema was a big deal. So that's the

0: can't see no way.
1: मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान के साथ भी बातचीत करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी वार्ता होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा के उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो कल से शुरू हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मैत्रीपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत युगांडा संबंधों पर मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा इतिहास पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडोमेगवो ओजोफो और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेत्किन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपील की है कि वे अपनी आर्थिक शक्ति को अपने लोगों के लिए रोजगार, धन और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक जीडीपी के करीब 40% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। नई दिल्ली में ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने ये बात कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग की व्यवस्था के मामले में पिछले कुछ वर्षों में काफी विकास किया है।
2: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण

0: उपलब्धि है, क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
1: सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज हुए सड़क हादसे में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया है। ये बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद आया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज 4 महीने के उच्चतम स्तर $108.77 प्रति बैरल पर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 332 अंक गिरकर 74,571 जबकि निफ्टी 126 अंक गिरकर 23,352 पर रहा। एशिया कप महिला क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। कल भारत ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said leaders from around the world are gathering in New Delhi for the 18th BRICS summit beginning tomorrow. In a social media post today, Mr. Modi expressed confidence that the conference will witness positive and meaningful discussions on various issues with the welfare of the world as the guiding objective. The 2-day summit, which will be held at Bharat Mandapam, will bring together 11 major emerging and developing economies. World leaders, including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Iran President Masoud Pezeshkian, and Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, among others, will participate in the summit. Ahead of the BRICS summit, Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin in New Delhi this afternoon. The two leaders are expected to discuss a range of issues of mutual interest: the Russia-Ukraine conflict, the situation in West Asia, trade relations and energy cooperation are expected to come up for discussion between the two leaders. President Vladimir Putin arrived in the national capital in the early hours today to attend the BRICS summit. Prime Minister Modi will hold talks with Iranian President Masoud Pezeshkian this evening. The meeting assumes significance in view of the prevailing situation in West Asia. The Prime Minister is also scheduled to meet United Nations Secretary General Antonio Guterres during his engagements in the national capital. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that resilience has become central to every nation's economic strategy, along with the need to foster and promote sustainability through deeper cooperation and stronger partnerships. Addressing the BRICS Business Forum in New Delhi this morning, Dr. Jaishankar said the summit is taking place at a time when the global political and economic order is undergoing significant changes.
3: Today's forum brings together a much wider set of enterprises and sectors and provides a space to examine not only commercial opportunities but also the conditions that enable them. This wider canvas is reflected in the forum's agenda. Supply chain connectivity and trade facilitation have emerged to be crucial, but so do building robust services, agriculture and agri-technology.

ऑल राइट फोक्स, नमस्ते, लो आदाब, तीन अल्फाज के साथ एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और ये जो हमारा लास्ट लेग ऑफ नमस्ते हेलो आदाब है, और 1 बजे तक हम चाहेंगे कि ऐसे नगमे जो 2000 के बाद आप तक रसाई कर चुके हों। तो 1947 एक ऐसी फिल्म थी, अर्थ 1947, 1942 लव स्टोरी तो आपने सुनी है, 1998 में फिल्म आई थी और 20th सेंचुरी की आखिरी फिल्मों में से एक थी। तो लेडी डायरेक्टर दीपा मेहता

से डायरेक्ट किया था, और जो कि एक वापसी सिद्धवा की नावल थी क्रैकिंग इंडिया। द फिल्म स्टार आमिर खान, नंदिता दास, राहुल खन्ना पोर्ट्रेइंग द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ इंडिया पार्टीशन, एंड इट वॉज पार्ट ऑफ मेहताज एलिमेंट्स ट्रायलॉजी फायर अर्थ एंड वाटर, है ना। तो उससे एक फिल्म का गाना हम सुनेंगे, फिर उसके बाद इस फिल्म के ताल्लुक से बात करेंगे। स्टे ट्यून एंड स्टे अलाइव।

0: ऑलराइट, बहुत ही दिलकश और खूबसूरत सा नगमा कंपोज बाय ए आर रहमान। सुखविंदर सिंह की आवाज़ अर्थली आवाज़ थी और काफ़ी दिलकश मानी जाती है। द इंस्ट्रूमेंटेशन यूजेस ढोल, तबला, रस्टिक फोक्स, एवरीथिंग इवोकिंग दी पंजाबी सॉइल की मिट्टी, खुशबू, हर चीज़। जावेद अख्तर साहब ने इसके बोल लिखे और एक जो ईडियम है वो फोक म्यूज़िक से उसका ताल्लुक़ रखा और सेलिब्रेशन का जो मूड है वो भी बरकरार रखा। रुत आ गई रे कन्वेज द अराइवल ऑफ द सीज़न, क्योंकि हिंदुस्तान के जितने त्यौहार हैं ज़्यादातर वो आप देखेंगे कि वो सीजनल त्यौहार है, तो कहीं ना कहीं मेटाफोर्स भी मिलते हैं। देर इज़ ऑल्सो स्टॉर्म ऑफ पार्टीशन इन टू इट। सो अर्थ 1947, इंडियाज़ ऑफिशियल एंट्री टू दी एकेडमी अवार्ड फॉर द बेस्ट फॉरन लैंग्वेज फिल्म 1998। द साउंड ट्रैक इज़ अमेजिंग, क्योंकि ए आर रहमान ने इसके बहुत ही दिलचस्प अंदाज से किया। और फिर उनका तजुर्बा सुखविंदर सिंह के साथ पहले भी हो चुका था छैया छैया गाने के लिए, तो जहाँ पर फोक और फिल्मी स्टाइल को जगह दी गई। द फिल्म इज़ ऑल्सो अप्रिशिएटेड फॉर इट्स ऑथेंटिसिटी। सो रहमान ने काफ़ी रिसर्च की और फिर उसके बाद पंजाबी फोक म्यूज़िक के ट्रेडिशन को अपने कॉम्पोजिशन में जगह दी। तो स्टे ट्यून एंड स्टे अलाइव विद अस। नमस्ते, हेलो, आदाब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जहाँ पर हर कहानी एक नगमा है और हर नगमे में कहानी आपको दिखेगी। तो चलिए इस मौके को हम बरकरार रखते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में रहेगा एक केदारनाथ फिल्म का गाना। सो स्टे ट्यून एंड स्टे क्लोजर टू अस, दैट इज FM रेनबो।
1: ఎల్ఐసి మీ జీవితంలో ఎల్లప్పుడూ మీకు తోడుగా ఉంటూ వచ్చింది. పరిచయం చేస్తున్న మై ఎల్ఐసి, ఎల్ఐసి సరికొత్త కస్టమర్ యాప్.
2: మీ పాలసీలు, పేమెంట్స్ పూర్తిగా టెన్షన్ ఫ్రీగా చూసుకునే ఒకే ఒక ప్లాట్ఫామ్.
1: ఇన్స్టెంట్ ప్రీమియం పేమెంట్స్, 360 డిగ్రీ పాలసీ డీటెయిల్స్, క్విక్ యాక్సెస్ టు పాలసీ బెనిఫిట్స్, పాలసీ అప్డేట్స్, రివైవల్, పేపర్లెస్ ఈకేవైసీ.
3: ఎల్ఐసి, ప్రతిక్షణం మీకు తోడుగా.
4: హే, వెరీ హంగ్రీ, వాట్ స్పెషల్ టుడే?
5: బిర్యానీ, కబాబ్స్, హలీమ్, బట్ వెయిట్, దిస్ మోర్.
4: More than food, it's the stories behind the recipes, the history of the kitchens and the flavors that shaped our city.
6: And where do we taste all these?
5: On Jashne Hyderabad, every afternoon at 2 o'clock on FM Rainbow 101.9.
4: From Charminar's Irani Chai to the evolution of Hyderabadi Biryani, it's a feast for your ears.
7: Jashne Hyderabad, savor the city's soul.

ऑलराइट, सीधे केदारनाथ की तरफ से आपको ये जो नगमा है 2018 का, डायरेक्टेड बाय अभिषेक कपूर, स्टार लेट सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान का ये डेब्यू रोल रहा है। द फिल्म टोल्ड द स्टोरी ऑफ द हिंदू पिलग्रिम एंड अ मुस्लिम पोर्टर हु फॉल इन लव अमिडस्ट द डिवास्टेटिंग फ्लड्स ऑफ उत्तराखंड इन 2013। काफिराना इज पिक्चराइज ऑन सुशांत

and Sara Ali Khan as their romance blossoms. The visuals of Kedarnath ki jo valley hai, uske dilkash manazir hai, temple hai, mountain hai, spiritual serene dimension bhi hai, saath hi saath ek khubsurat jo hai wo hai aapki love story. केदारनाथ दरअसल फिल्म नहीं थी बल्कि उसमें ढेर सारी दूसरी चीज़ें भी थी, जैसे स्टोरी होने दीजिए, फिर वहाँ के दिलकश मंजर और ढेर सारी चीज़ें. अरिजीत सिंह और निकिता गांधी ने अपनी खूबसूरत आवाज़ों में उसको एक टेंडरनेस और फ्रेशनेस बख्शी. अमित त्रिवेदी की कंपोजिशन है और बहुत ही बढ़िया सा फोक क्लासिकल मॉडर्न साउंड सब कुछ है. द मेलोडी इज सॉफ्ट फ्लोइंग इंटीमेट और अमिताभ भट्टाचार्य के अल्फाज हैं और काफिराना सा है इश्क है या कैप्चरिंग द वंडर ऑफ डिस्कवरिंग लव फॉर द फर्स्ट टाइम है ना, कमाल की बात. तो काफिराना बिकेम वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रीम रोमांटिक ट्रैक्स ऑफ 2018. फिर सारा अली खान, क्योंकि उनका ये डेब्यू था और ये फिल्म में उन्होंने पहली बार काम किया था. शी वॉज ऑल्सो प्रेज्ड और एक अच्छा एस्टेब्लिशमेंट स्क्रीन प्रेजेंस भी उन्हें मिला. अमित त्रिवेदी ने इसके रिकॉर्डिंग में काफ़ी मिनिमल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए, लेकिन जो डिवोशनल और रोमांटिक थीम का बैलेंस है वो शायद केदारनाथ में बहुत बहुत साफ तरीके से देखने को मिलता है. सो काफिराना इज़ नॉट जस्ट अ सॉन्ग बट इट्स अ हिम्न टू इनोसेंस, मासूमियत का तराना है ये. और मैजिक ऑफ द फर्स्ट लव, अरिजीत सिंह की आवाज़, ढेर सारी खूबसूरत चीज़ें है ना, कमाल की बात. तो इसी तरह आप हमारे साथ बने रही हैं, 12:30 हमारी स्टूडियोज़ की घड़ी बता रही है. तो आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं देवडी फिल्म से ये नगमा.

ओके दैट वाज रियली गुड। तोची रैना की सवारी आपने सुनी, और परदेसी परदेसी इज़ नो मोर स्ट्रेंजर, क्योंकि देव डी को मुख्तलिफ तरीक़ों से अनुराग कश्यप ने दर्शाने की पूरी पूरी कोशिश की थी। एंड दैट वाज द ब्यूटी ऑफ दिस सॉन्ग, एंड दैट इज़ व्हाई वी हैव बीन एबल टू लिसन टू सच सॉन्ग्स, नो डाउट अबाउट इट। सो चाहे वो आपकी अशोक कुमार की देवदास होने दीजिए या फिर दिलीप कुमार की देवदास होने दीजिए, सो देर इज़ ऑलरेडी अ ट्रेडिशन ऑफ देवदास, बट द मॉडर्न वर्जन ऑफ द देव डी इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, एंड दैट इज़ वेयर अनुराग कश्यप इन कैश्ड ऑन इट। 2009 में ये फिल्म आई थी अनुराग कश्यप की, द मॉडर्न स्टोरी टेलिंग ऑफ शरद चंद्र चट्टोपाध्याय क्लासिक नावल देवदास, स्टारिंग अभय देओल, माही गिल एंड कल्कि कुचलिन। द फिल्म ब्रोक अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल मेलो ड्रामा एंड प्रेजेंटेड अ रॉ एजी एंड कॉन्टेम्प्रेरी टेक ऑन लव, हार्ट ब्रेक एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन। है ना कमाल की बात। अमित त्रिवेदी का इस बार भी बेहतरीन सा संगीत रहा है, हु हैज़ मेड अ डेब्यू विद देव डी, और संग भाई कैलाश खेर, तोची रैना स्पेशली, शिल्पा राव और दूसरी आवाज़ें भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक बीट है, फिर साथ ही साथ फोक रिदम्स हैं और रॉक इन्फ्लुएंसेस हैं, तो अमिताभ वर्मा के बोल हैं। तो परदेसी परदेसी बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है अब बताने का। एंड अमित त्रिवेदी ऑल्सो वॉन द नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन फॉर देव डी, सीमेंटिंग हिज प्लेस एज इंडियाज मोस्ट इनोवेटिव कंपोजर्स बैक देन। तो हुई ना बात कमाल की। तो आइए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 12:35, तो द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी द माइंड ब्लोइंग फ्रॉम वीरे द वेडिंग। देयर वी गो।

All right, so you just cannot ignore this film because वीरे दी वेडिंग 2018 की खास फिल्मों में से एक थी. शशांक घोष ने डायरेक्ट किया था, जहां पर करीना कपूर खान और सोनम कपूर, स्वरा भास्कर और शिखा तलसानिया ने चारों मिलकर एक जबरदस्त फीमेल सेंट्रिक ड्रामेडी अबाउट फोर फ्रेंड्स नेविगेटिंग लव, मैरिज एंड इंडिपेंडेंस माइंड ब्लोइंग इज रियली हाई एनर्जी ट्रैक है. और जहाँ पर मीका सिंह ने अपना ट्रेडमार्क स्टाइल वाला पंच, स्वैगर, पार्टी वाइब सब कुछ इस गाने में दिया है. शाश्वत सचदेव ने म्यूजिक बनाई. ईडीएम वगैरह पंजाबी ढोल है, तो बहुत सारे एक्टर्स भी पंजाबी हैं इस फिल्म में. अगर आप देखेंगे तो अन्विता दत्त ने इसके लिरिक्स लिखे हैं, जो कि चीकी है, प्लेफुल है और कहीं ना कहीं फुल ऑफ एटीट्यूड नज़र आते हैं. तो मीका सिंह एनर्जी के लिए जाने जाते हैं, उनकी डिलीवरी बहुत ही शानदार है. अ डिस्टिंक्ट यू नो स्टैंड आउट साउंड ट्रैक है. करीना कपूर खान शॉट द फिल्म वाइल बैलेंसिंग हर न्यू मदरहुड, मेकिंग हर परफॉर्मेंस अ टॉकिंग पॉइंट. है ना कमाल की बात. तो इस इलेक्ट्रिफाइंग वॉइस के साथ आगे बढ़ते हैं. और 12:40 हमारी स्टूडियोज की घड़ी बता रही है. आपको एक बार फिर से याद दिला दें, आपने अपने रेडियो सेट्स पर ट्यून किया है हमारा एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है नमस्ते हेलो आदाब. और मेरा नाम है रेडियो मैन और शो पहुंच रहा है रेडियो की तरंगों के संग, जो कि है 101.9 के माध्यम से. तो रेनबो एड्स कलर्स टू योर लाइफ. तो चलिए आगे बढ़ेंगे और सुनेंगे एक दूसरा नगमा. दिस टाइम वी आर गोइंग टू ब्रिंग इन एक शानदार सा गाना जो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा. आइए मिलकर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये गाने में इतना हुस्न, इतनी खूबियाँ किस वजह से हैं. देयर वी गो.

ऑलराइट, तो कव्वाली का भी जो असर है वो भी आपको इस नगमे में देखने को मिलेगा, एंड द ब्यूटिफुल ट्रैक दैट यू जस्ट लिसन टू. तो आज दोपहर है, जुमे का दिन है, FM रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं हमारा ये ख़ास कार्यक्रम, और पेशकश है नमस्ते हेलो आदाब की, और मैं हूँ आपका रेडियो मैन. सो वी आर ड्रेंच्ड इन टू द पैशन एंड द पोएट्री, मेरे रश्क कमर बादशाह फिल्म से. ये गाना दरअसल टाइमलेस गाना है, नुसरत फ़तेह अली ख़ान की जो कव्वाली है उसको याद दिलाता है, और इट कट्स अक्रॉस द री इमेजिनेशन फॉर अ न्यू जनरेशन विद द वॉइस ऑफ तुलसी कुमार अलॉन्ग साइड राहत फ़तेह अली ख़ान. है ना, 2017 की ये फिल्म रही है, मिलन लुथेरिया ने जिसे डायरेक्ट किया था, अजय देवगन, इमरान हाशमी, इलियाना डी क्रूज, ईशा गुप्ता इस फिल्म के मेन कैरेक्टर्स हैं. एंड द फिल्म इज़ अबाउट द हीस्ट थ्रिलर सेट ड्यूरिंग द इमरजेंसी एरा ऑफ द 70s. तो मेरे रश्के कमर एक बड़ा ही दिलचस्प गाना है, क्योंकि ओरिजिनली कंपोज्ड एंड संग बाय नुसरत फ़तेह अली ख़ान, एंड देन इट वाज रिक्रिएटेड फॉर द फिल्म्स बाय तनिष्क बागची. राहत फ़तेह अली ख़ान ने भी अपने अंकल की लेगेसी को बरकरार रखा, तुलसी कुमार ने अपनी डेलिकेट वॉइस के साथ इसे मॉडर्निटी का टच दिया. सो द फ्यूजन ऑफ कव्वाली रूट्स फिर साथ ही साथ कॉन्टेम्प्रेरी ऑर्केस्ट्रा गेव द सॉन्ग बोथ ऑथेंटिसिटी एंड फ्रेशनेस. तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं सवानंद किरकिरे की आवाज में तू किसी रेल सी, एंड दिस वन इज फ्रॉम मसान.

ऑलराइट, तो रेल और पुल का जो संगम है वो शायद मसान में आपको देखने को मिलेगा. तू किसी रेल सी फ्रॉम द मसान फिल्म. द सॉन्ग इज नॉट जस्ट अबाउट लव बट इट्स ऑल्सो अबाउट द जर्नीज डिपार्चर बिटर स्वीट एंड द ब्यूटी ऑल दैट इट कैरीज है ना. और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि नीरज गहवान जो कि हैदराबाद से उनका ताल्लुक है. द फिल्म स्टार ऋचा चड्ढा विक्की कौशल एंड संजय मिश्रा. The film is set in Varanasi, explores the themes of love, loss, and societal constraints. So it won the international acclaim, including the awards at the Cannes Film Festival. Tu Kisi Rel Si is picturized on Vicky Kaushal and Shweta Tripathi. और सवानंद किरकिरे की आवाज़ में ये अर्थली हार्टफेल्ट वाला गाना है. इंडियन ओशन ने जिसकी मौसीकी तरतीब दी, एक फ्यूजन बैंड है जो कि ब्लेंड करता है फोक रॉक और क्लासिकल इन्फ्लुएंसेस को. और इंस्ट्रूमेंटेशन मिनिमल होने के बावजूद भी इसके अंदर इतना इवोकेटिवनेस है कि आप कुछ लम्हों के लिए रुक जाएंगे. रिटन बाय वरुण ग्रोवर, फिर उसके बाद इस लिरिक्स को दुष्यंत कुमार की जो पोएम है उससे उन्होंने अडेप्ट किया है. एंड द मेटाफॉर, तू किसी रेल सी गुजरती है मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ. तो ये एक मेटाफोर है. इट्स मोस्ट पॉइनेंट लाइन्स इन द हिंदी सिनेमा कह सकते हैं, है ना. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के बाद आपके लिए रहेगा एक

दिल तो राजी नहीं है कि नमस्ते हेलो आदाब के शो को कुछ इस तरह से अख्तिताम करें, लेकिन दिस वाज अ फिटिंग सॉन्ग। राजी 2018 की फिल्म थी मेघना गुलजार ने, जिसे डायरेक्ट किया था आलिया भट्ट, विक्की कौशल, हरिंदर सिक्का की नावल कॉलिंग सहमत। एंड द फिल्म टेल्स द स्टोरी ऑफ ए कश्मीरी वुमन हु मैरीज इन टू अ पाकिस्तानी मिलिट्री फैमिली टू सर्व एज एन अंडर कार इंडियन स्पाई ड्यूरिंग द 1971 वॉर। द सॉन्ग ऑफकोर्स राजी, अरिजीत सिंह की खूबसूरत आवाज़, टेंडर और इंटेंसिटी के साथ साथ शंकर एहसान लॉय की मौसिकी और एक बेहतरीन अरेंजमेंट। और खुद गुलजार ने इसके बोल लिखे थे, राजी है दिल मेरा। जी हाँ, गुलजार के अल्फाज सॉन्ग को एक नई जिला बख्शते हैं और एक नई रूह देते हैं। अरिजीत सिंह को काफ़ी काफ़ी अप्रिशिएट किया गया इस गाने के लिए। तो 1:01 हमारा जो वक्त है वो यहीं पर ख़त्म होता है नमस्ते हेलो आदाब का, लेकिन हेलो रेनबो आपके साथ बरकरार रहेगा। आप हमें अपने व्हाट्सएप के माध्यम से बात कर सकते हैं, अपने कुछ इजहार और ख्यालात हैं तो उसका भी इजहार आप कर सकते हैं। तो चलिए हम हमारा जो शो का पन्ना है वो पलटते हैं और हम रेनबो की तरफ बढ़ेंगे। हेलो रेनबो, जहाँ पर आपको मौजूदा कंटेम्प्रेरी फिल्मों के नगमे सुनाए जाएंगे। स्टे ट्यून एंड स्टे टुगेदर।

हमारी सूर्य उदय SMS सेवा है, एंड हैव अ गुड डे। एंड देन करता रहा फरेब कोई सादगी के साथ, इतना बड़ा मजाक मेरी जिंदगी के साथ, शायद मिली सजा इस जुर्म की मुझे, हो गया था प्यार मुझे एक अजनबी के साथ। बहुत ही शानदार सा मैसेज हमें भेजा है, और उम्मीद के ऐसी ही शायरी की जो रवानी है वो बरकरार रहेगी हमारे शो में। तो हेलो रेनबो पर शुरुआत करते हैं अल्फा फिल्म से, हानिया सॉन्ग, जहाँ पर दिलकश मनाजिर हैं और सरवारी, देन यू हैव आलिया भट्ट, बोथ ऑफ देम, विशाल ददलानी एंड कुमार के लिरिक्स। देयर वी गो।

0: FM Rainbow 101.9, musically yours.
1: ऑल राइट दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हेलो रेनबो की तरफ से, और मैं हूं आपका रेडियो मैन. ये परहैप्स हमारा आखिरी शो है, यानी कि इसका मतलब कि 2 बजे तक हम आपके साथ बरकरार रहेंगे, जहां पर कंटेम्पररी म्यूज़िक आप सुन सकते हैं. तो जल्दी से आप अपने मैसेजेस पर जाइए, व्हाट्सएप कीजिए हमें. और हमें एक जो मैसेज मिला है, नमस्कार, ये

ऑलराइट, तो पहला जो नगमा हमने आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत किया वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नंबर, अल्फा फिल्म, अल्फा 2026 की नई मॉडर्न फिल्म है और इसमें काफ़ी एक्शन है। और ये फिल्म दरअसल बहुत सारी चीज़ों पर डील करती है, समझिए। इट हैज़ आलिया एंड देन शर्वारी, देन द सिंगर्स आर विशाल ददलानी, और फिर आपके साथ है रोहांश पंडित, फिर अबीर पंडित दोनों ने। म्यूजिक इज़ बाय रोहांश एंड अबीर, एंड देन द लिरिक्स रिटन बाय कुमार विथ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अन्विता दत्त, कौसर मुनीर, और फिर रोहांश और अबीर ने साथ ही साथ अपना कलम भी इस पर इस्तेमाल किया है। 2 महीने से ज़्यादा हुए नहीं हैं इस फिल्म को, जुलाई 2026 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। एंड इट इज़ अ ट्रैक दैट ब्लेंड्स द एकॉस्टिक गिटार्स, इलेक्ट्रिक बेस एंड ऑल्सो ईडीएम स्टाइल प्रोग्रामिंग। विशाल ददलानी इज़ पावरफुल वॉइस, इंटेंसिटी आपको देखने को मिलेगी, फ्रेशनेस है, यूथफुल एनर्जी है रोहांश और अबीर की, और कोरियोग्राफी इज़ क्वाइट गुड। और

0: सिनेमाटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी है. विजय गांगुली ने इसे डायरेक्ट किया है. द विजुअल्स आर अपीलिंग एंड इट्स ऑल्सो द फ्रेंडशिप एंड इमोशनल कनेक्शन दैट ब्रिंग्स टुगेदर. अल्फा इज़ पार्ट ऑफ द वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स है ना, जो कि एक था टाइगर वॉर और पठान को भी उन्होंने स्पॉन्सर किया था. तो बॉबी देओल की एक्टिंग बहुत ही दिलचस्प है और साथ ही साथ इट्स अ गुड थिंग टू नोट. तो चलिए लिसनर्स, हम आगे बढ़ते हैं. हेलो रेनबो पर जो हमारा अगला जो गाना है वो है कॉकटेल टू बंधु 2.0. तो बंधु तू मेरा, शाहिद, कृति, रश्मिका, प्रीतम और कविता, नीरज, इरशाद, कामिल, एवरीबडी, जस्ट टू रिमाइंड यू, देयर वी गो.
1: टीचर गंदे सॉन्ग यार.
2: गांसरी पागल है यार.
1: क्यों?
2: व्हाट? ट्रोल हो जाएंगे हम लोग. ट्रोल.
1: बट व्हाई? इट्स आइकॉनिक.
2: फिल्म में हमारे सारे गाने ओरिजिनल हैं. काहे को पंगा लेने का? छोड़ दे, आजकल जनता ना बहुत पिक्चरस हो गई.
1: बट इमेजिन हाउ द सॉन्ग वुड लुक इफ एली कुणाल एंड दिया डिड इट. आवर वर्जन. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. नाउ यू आर गेटिंग मी.
2: यू गाइस वांट टू ऑडिशन? या ट्रोल हो जाएंगे, मत करो.

0: guys. We killed it.
1: अगले क्या? Troll हो जाएंगे.
2: Yeah.
1: Not at all.
0: Dino, डाल दे.
3: Alright, so Cocktail 1 का ये जो sequel है, Cocktail 2, इसमें भी it was a really brilliantly made. शाहिद कपूर, कृति सनन और साथ ही साथ रश्मिका मंदना, होमी अज्जानिया ने फिल्म को खूबसूरत अंदाज से डायरेक्ट किया था. कविता सेठ और नीरज श्रीधर की ये जो कंपोजिशन है, प्रीतम ने एक ऐसी जो नो कंपोजिशन की है कि कमाल की बात है. द इरशाद कामिल के अल्फाज हैं एंड दिस इज एक्चुअली द रीमेकिंग ऑफ दैट सॉन्ग, तुम ही हो बंधु और तुम ही और सब कुछ. इट वॉज रियली रियली अ ग्रेट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. The film also continues to bring the bonding, connection, friendship and then the relationship, much like the original Cocktail. So the soundtrack is largely driven by Pritham to recreate the magic of the original, and today's audience is rut, you know, just being given that dose of the original song. So, this

0: साथ विल टेक अ ब्रेक एंड आफ्टर दैट विल कम बैक. सो स्टे ट्यून एंड स्टे अलाइव. यू हैव ट्यून टू दिस वंडरफुल स्टेशन आकाशवाणी हैदराबाद ऑन एफएम 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एंड आई एम योर रेडियो मैन. सो टेक अ ब्रेक.
1: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్స్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటరు నమోదు చేసిన దానికి ఫామ్ 6 తో పాటు డిక్లరేషన్ ఫామ్, అభ్యంతరాలకు ఫామ్ 7, సవరణలకు ఫామ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 17 నుంచి అక్టోబర్ 7 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ఏఆర్ఓ, ఏఈఆర్ఓ లేదా బిఎల్ఓ కు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1950 కు కాల్ చేయండి.
2: Hey there, do you agree with me that some emotions cannot be explained? They can only be tasted. With a pinch of history, a spoonful of culture, and with a whole lot of flavor, every dish has a tale to tell. Of its roots, of its rich legacy, and about the goodness within it. From royal recipes to timeless streetside favorites, discover the stories behind your loved foods on Jashne Hyderabad on Rainbow FM at 2 p.m. every day. Jashne Hyderabad, where food is served on air.
3: अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा. हैदराबाद तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा. यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है. यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगा बन रही, कंपनियाँ खुल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोडा, फ्लाईओवरा और ब्रिजा बनाते जा रहे. तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंटा भी हो रहे. ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे. हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे मगर अपने हैदराबादियाँ हैं कि सुन रही नहीं. चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा. मेरे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियां नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियां चलाओ. अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतजार करते रहते. बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियां चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया नहीं तो गांधी को पहुंच जाते. रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत जरूरी है. तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो.

ऑल राइट, सो कंजूसी की भी हद होती है, लेकिन धमाल फोर में कंजूसी को एक बहुत ही दिलकश अंदाज से बताया गया है। सारी पिंक सारी और सिंगर संजू राठौड़ ने गाया है, म्यूजिक है तनिष बागची, संजू राठौड़ और गौरव राठौड़ का, लिरिक्स है रश्मि विराग के, और संजू राठौड़ ने भी उसे थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज किया है। सो मिक्स एंड मास्टर्स अगर देखेंगे तो एरिक पिलाई, एंड द साउंड ट्रैक इज ऑफ द फ्यूचर साउंड ऑफ मुंबई, एंड वेरी एनर्जेटिक ट्रैक ब्लेंडिंग दी बॉलीवुड डांस रिदम्स, ईडीएम स्टाइल, प्रोडक्शन, एवरीथिंग। सो द वोकल्स ऑफ संजू रस्टिक बट वेरी पावरफुल एंड फोक इंस्पायर्ड गुजराती लिरिक्स की तरह आपको लगेगा, लेकिन कॉन्टेम्प्रेरी अरेंजमेंट है, वेरी प्लेफुल लिरिक्स हैं, और द वर्ड सेलिब्रेट द चार्म ऑफ द सारी एज ए सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड ट्रेडिशन रैप्ड इन फन मेटाफॉर्स। तो म्यूजिकल वीडियो अगर आपको देखना है तो बहुत कलरफुल है, कोरियोग्राफी भी काफ़ी अच्छी है, विद अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, कीपिंग द ट्रेडमार्क ऑफ फ्रेंचाइजी ऑफ धमाल कॉमेडी वाइब अलाइव, जिसे डायरेक्ट किया है इंद्र कुमार ने और खुद प्रोड्यूस किया है अजय देवगन, भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और दूसरे साथियों ने। So that was a sari more than just a soundtrack and a very interesting song. तो आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हमारा

0: थक रहे हो।
1: छीन लूं मैं तेरा पैसा पैसा पैसा, छीन आए लेके पैसा पैसा पैसा, एक ही तो शौक है मेरा।
2: पैसा ही पैसा।

0: ₹50 काटो ओवर एक्टिंग का।
1: जीना मरना पैसा पैसा पैसा, नींद चुराए मेरी पैसा पैसा पैसा, एक ही तो शौक है मेरा।

0: removed from the upper pocket. British chores. Help! Go!
1: Gana khatam, paisa hajam.
2: All right, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि ये पैसे की बात ही कभी ख़त्म नहीं होगी. तेरा पैसा मेरा पैसा फ्रॉम द मूवी वेलकम टू जंगल, और दिस इज द लेटेस्ट बॉलीवुड पार्टी एंथम. तेरा पैसा मेरा पैसा फ्रॉम वेलकम टू जंगल, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा गाना है, एनर्जेटिक है. वोकल्स में कभी कभी आपको अक्षय कुमार की आवाज़ें भी देखने को मिलती है कि 50 रुपये ओवर एक्टिंग के काटो और फिर खेल ख़त्म, पैसा हजम. दैट्स व्हाट ही आल्सो सेज. द लिरिक्स आर चीकी प्लेफुल एंड द विजुअल्स आर सो नाइस एंड गुड, राइट. तो इसे डायरेक्ट किया है अहमद खान ने. काफ़ी मल्टी स्टारर फिल्म है. सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, रवीना टंडन, दिशा पतानी एंड जैकलिन फर्नांडिस, अरशद वारसी, परेश रावल, राजपाल यादव एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. तो ये OTT पर भी रिलीज़ हो चुकी है. 2 महीने के अंदर अंदर ये फिल्म OTT पर आ चुकी है. होप यू आर गोइंग टू वॉच इट एंड लाइक इट. तो आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं दूसरा सॉन्ग. एंड वी आर गोइंग टू प्ले दिस वन इज फ्रॉम द मूवी कॉल्ड सतलुज से गाना आपके लिए दुर्मुख लाहा.

वाह, बहुत ही शानदार सा गाना सतलुज फिल्म से, दुर्मुख लाहा। दुर्मुख लाहा ले गई एक बड़ी कंट्रोवर्शियल फिल्म थी, जिसे ओटीटी पर रिलीज़ किया गया, फिर उसके बाद वापस विड्रॉ कर लिया गया। द सॉन्ग दुर्मुख लाहा सतलुज इज़ अ पावरफुल हिंदी पंजाबी सिनेमैटिक ट्रैक, एंड देन यू हैव दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जेटिक कंपोजिशन, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं एक शब्द है, एक गुरबानी की टोन आपको नज़र आती है। द वोकल्स आर ऑल्सो रॉ, पावरफुल एंड एट द सेम टाइम इवोकिंग इमोशंस विथ लॉट्स ऑफ इंटेंसिटी। सतलुज इज डायरेक्टेड बाय हनी त्रेहान, एंड देन इट ऑल्सो स्टार्स दलजीत दोसंझ, देन अर्जुन रामपाल, सुखविंदर विकी, कमलजीत सिंह एंड गीतिका विद्या, एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय रॉनी स्क्रूवाला एंड अदर्स, अभिषेक चौबे एंड सो ऑन। द फिल्म एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ आइडेंटिटी, रिजिलियंस, देन द कल्चरल रूट्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स, एंड इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग बिकॉज संग बाय भाई हरजिंदर सिंह जी, हु एड्स अ स्पिरिचुअल एंड ऑल्सो द इमोशनल डायमेंशन टू द ट्रैक। तो मन तो कह रहा है कि बार बार इस गाने को सुने, और सुनना भी चाहिए, लेकिन हमें और दूसरे अन्य गाने भी प्ले करने हैं। तो आइए प्ले करते हैं हमारा दूसरा गाना। दिस इज़ गोइंग टू बी आवर अपन टू, तेरा मेरा रिश्ता। दिस इज़ आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड, वी हैव इमरान हाशमी, दिशा मिथुन एंड सो मेनी अदर्स। देयर वी गो।

दोस्तों 101.9 एफएम पर आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम नैरंग। मैं हूं आपका दोस्त आरजे उसामा। सबसे पहले आज नैरंग में पेश होने वाले प्रोग्राम की तफसील आपको बता देते हैं। तो सामीन, प्रोग्राम का आगाज़ होगा क़िरत कलाम पाक से। उसके बाद आप सुनेंगे हर्फ ताबिंदा, तहरीर व पेशकश होगी जनाब नूरुद्दीन साहब की। उसके बाद आप डॉक्टर माइक पर में सुनेंगे डॉक्टर राम प्रसाद को, जो वायरल इन्फेक्शन के असबाब और इलाज पर तफसील से रोशनी डालेंगे। उसके बाद आप प्रोग्राम गीत सुरेले गाता जा में खूबसूरत और प्यार भरे नगमे सुनेंगे और प्याम शब के साथ नायरंग इख्तिताम पजीर होगा। तहरीर व पेशकश होगी जनाब जैदी साहब की। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं क़िरत कलाम पाक से।

0: FM Rainbow 101.9.
1: अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा। हैदराबाद तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगा बन रही, कंपनियां खुल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोडा, फ्लाईओवरा और ब्रिजा बनाते जा रहे। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादियां हैं कि सुन रहे नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेको बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियां नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियां चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतजार करते रहते। बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियां चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया ने तो गांधी को पहुंच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत जरूरी है। तो

0: रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो।
1: जी दोस्तों, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी ज़रूरी है, और हमेशा याद रखें कि घर में आपका कोई मुंतज़िर है। ऐसे तो बहुत सारे कोड्स आपने देखे होंगे ट्रैफिक पुलिस के जानिब से लगाए जाते हैं चौरस्ते पे और बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। तो इसीलिए सामईन, आप सभी से गुजारिश है कि ट्रैफिक रूल को ज़रूर फॉलो करें। और अब बारी है हर्फ़ ताबिंदा की, तहरीर व पेशकश है जनाब नूरुद्दीन साहब की, लीजिए समाअत फरमाइए।
2: अच्छा दोस्त, ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमतों में से एक होता है एक सच्चा और मुखलिस दोस्त। न सिर्फ हमारी खुशियों को दुबाला करता है, बल्कि गम और तकलीफ़ के वक्त सहारा बनकर खड़ा होता है। अच्छे दोस्त की खूबियाँ: इखलास और सच्चाई। वो आपसे बग़ैर किसी मतलब के मोहब्बत करता है और हमेशा सच बोलता है, चाहे सच कड़वा ही क्यों ना हो। खुशी और गम में साथ, जब सब दूर हो जाएं वो तब भी आपके साथ होता है। एक वफादार दोस्त मुश्किल वक्त में पहचाना जाता है, आपको बेहतर बनाने वाला। अच्छा दोस्त वो होता है जो तनख़ीद भी मोहब्बत से करे, आपकी इस्लाह करे और आपको कामयाबी की तरफ मायल करे। वफादार और राजदार, जो आपके राज दूसरों से नहीं बांटता बल्कि आपकी कमजोरियों को ढांपता है, आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी इज्जत करे। ऐसे दोस्त बहुत कीमती होते हैं जो आपकी पीठ पीछे भी आपका भला चाहें। अच्छे दोस्त की अहमियत, अख्वाल व अहादीस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा तुम में से हर एक को देखना चाहिए कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। दोस्त वो नहीं जो खुशियों में साथ हो, बल्कि वो है जो गम में कंधा दे सके। हजरत अली का फरमान, अगर तुम अपने राज को छुपाना चाहते हो तो उसे अपने दिल में कैद रखो, दोस्त के पास नहीं। मगर अगर कोई राज दोस्त को दे ही दिया तो सिर्फ अच्छे और बावफा दोस्त को दो। दोस्ती निभाने की हिदायतें: दोस्त को उसके ऐबों समेत कबूल करें, मामूली बातों पर दूरी ना करें, वक्त निकालें, हाल पूछें, दिल से दुआएं दें।
1: सामईन, अभी आपने सुना हर्फ ताबिंदा, तहरीर व पेशकश थी जनाब नूरुद्दीन साहब की। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों कि ज़िंदगी में सच्चा दोस्त बहुत ज़रूरी है, और एक सच्चा दोस्त वही है जो आपको मुश्किल वक्त में काम आए। और शायद अहमद फराज़ ने ऐसी ही दोस्ती के लिए या ऐसे ही दोस्तों के लिए कहा था कि ज़िंदगी इससे तो ज़्यादा तेरी उम्र नहीं, ज़िंदगी इससे ज़्यादा तो तेरी उम्र नहीं, बस किसी दोस्त के मिलने से जुदा होने तक। तो दोस्तों, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, फ़िलहाल लेते हैं एक और छोटा सा वक्फ़ा, हमारे साथ बने रहिए, बस अभी हाज़िर होते हैं।

0: FM Rainbow 101.9.
1: प्रोग्राम डॉक्टर माइक पर सिलसिले के तहत 25 सितंबर को आप सुन सकते हैं डॉक्टर एस जी विष्णु सत्या को। उन्वान होगा यूनानी मेडिसिन में मुख्तलिफ अमराज का इलाज। तो सामीन सुनना न भूलें डॉक्टर साहबा की मुफीद बातें और मशवरे रात 9:30 बजे सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी हैदराबाद के रेनबो FM 101.9 पर। जी सामीन इकराम, अब बारी है प्रोग्राम डॉक्टर माइक पर सुनने की। तो सामीन इकराम, आज इस प्रोग्राम में आप सुनेंगे डॉक्टर राम प्रसाद को, जो वायरल इन्फेक्शन और वायरस से मुतालिक तफसीली

0: रोशनी डालेंगे और हमारे सामईन को बताएंगे कि वायरल इन्फेक्शन से किस तरह बचा जा सकता है। तो लीजिए समाप्त कीजिए ये खास गुफ्तगू।
1: हम अपने सामईन को आज डॉक्टर राम प्रसाद साहब से मिलवाने वाले हैं। डॉक्टर साहब अपनी तमाम तर मसरूफियात को छोड़कर आए हैं और चाहते हैं कि सुनने वालों को उनकी सेहत के बारे में कुछ खास अहम बातें बताएं। आदाब अर्ज़ डॉक्टर साहब।
2: आदाब अर्ज़।
1: हाँ तो डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ
2: जी
1: कि हर तरफ सुनाई देता है कि वायरस वायरस वायरल फीवर हो गया, वायरल। तो ये वायरल है क्या डॉक्टर साहब?
2: देखिए, वायरल एक इंतहाई छोटा सा जर्म है
1: जी,
2: यानी इतना छोटा और इतनी ख़तरनाक बीमारियां ये इंसान में पैदा करता है।
1: हाँ।
2: आपको हैरत होगी कि माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो आमतौर से हम बैक्टीरिया देखते हैं, वायरस को आप नहीं देख सकते।
1: अच्छा।
2: वायरस बना होता है एक आरएनए और डीएनए के कॉम्बिनेशन से, इसके अतराफ एक प्रोटीन की लेयर होती है और ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप होता है। यानी अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक का मतलब आप ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से देख ही नहीं सकते, इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। देखिए, इतना छोटा सा जम इतना हंगामा सारी दुनिया में मचा रखा है कि इससे कई किस्म की बीमारियां दिमाग से लेकर पैर तक की होती हैं। ये हर निज़ाम को अफेक्ट करता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो खांसी नज़ला जुकाम
2: जी
1: ये सब वायरल कई
2: जी
1: नतीजा
2: जी
1: है?
2: ये ऑर्डिनरली
1: अच्छा।
2: जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में नज़ला ज़ुकाम खांसी
1: हाँ।
2: या हलक में दर्द वगैरह देखते हैं,
1: जी
2: तो हमारे पुराने लोग बोलते थे कि 3 दिन आप वेट करिए, 3 दिन सब्र करिए,
1: हाँ,
2: ये खुद ब खुद चला जाएगा, और वो बिल्कुल सही है।
1: अच्छा।
2: लेकिन हकीकत ये है कि ये जो वायरस होता है बहुत कम पावर का रहता है।
1: जी
2: इससे जो ज़्यादा पावर का जो रहेगा उससे जो फ्लू होगा या इन्फ्लुंजा होगा वो होगा स्वाइन फ्लू या इन्फ्लुंजा, जो ख़तरनाक किस्म का हो सकता है।
1: अच्छा।
2: तो एक तो हुआ ऑर्डिनरी खांसी जुकाम नज़ला वगैरह, और एक हुआ स्वाइन फ्लू और इन्फ्लुंजा वगैरह, जो वो भी वायरस से होते हैं, ये भी वायरस से होते हैं। इसमें इंसान की मुदाफ़त क़ुव्वत बहुत काम करती है। अगर जिस्म मजबूत है, सेहत अच्छी है, तो ऐसे सारे वायरस जिस्म से खारिज हो सकते हैं। इन्फेक्शन इसलिए होता है क्योंकि जिस्मानी क़ुव्वत कम होती है।
1: जी
2: जैसा अब स्वाइन फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, अब ये सारे दुनिया में एक एपिडेमिक की तरह से फैला हुआ है।
1: जी हाँ। साथ में डॉक्टर साहब ये डेंगू बुखार भी है ना,
2: जी
1: तो वो भी वायरल
2: जी
1: की वजह से ही
2: जी
1: है?
2: वायरल में खास बात यह है, तो एक तो ये डायरेक्ट इन्फेक्शन करता है,
1: जी
2: इंसान में डायरेक्ट दाखिल होता है,
1: जी
2: और बाज़ वायरल इन्फेक्शन किसी ज़रिए से होते हैं। तो डेंगू फीवर मच्छर से होता है।
1: जी
2: ये मच्छर एक ख़ास मच्छर होता है जो आमतौर से मलेरिया नहीं फैलाता, बल्कि ये ख़ास डेंगू, चिकनगुनिया और
1: अच्छा
2: येलो फीवर फैलाता है।
1: अच्छा
2: इस मच्छर को हम बोलते हैं ईडिस इजिप्टाई, और इसकी खसूसियत यह है कि मलेरिया का मच्छर जो प्रोटोजोल इन्फेक्शन है वो रात में काटता है।
1: हाँ।
2: देखिए मच्छरों में भी क्या कमाल है,
1: जी
2: और ये मच्छर जो है दिन में काटता है।
1: जी
2: तो अब हम लोग मरीजों को ये बोल रहे हैं, जनरल पॉपुलेशन में ये बोल रहे हैं कि भाई दिन में भी आप जो है ऐसा कोई बंदोबस्त करिए, जैसा कोई कॉयल लगा लीजिए या कोई इलेक्ट्रिकल मैनुअल लगाइए, ताकि दिन में भी आपको मच्छर ना काटे। तो मच्छर से हुआ एडीसी जिप्टाई, डेंगू फीवर और येलो फीवर, जो ख़तरनाक किस्म के बुखार होते हैं।
1: जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये स्वाइन फ्लू भी यही चीज़ है?
2: स्वाइन फ्लू जो है इन्फ्लुएंजा की एक बहुत ही ख़तरनाक शक्ल है।
1: अच्छा।
2: देखिए इसमें खसूसी बात यह है कि दरअसल ये स्वाइन में पाया जाता है। स्वाइन यानी आमतौर से जो हम खिजर कहते हैं वो क्या कहते हैं, सुअर कहते हैं या
1: हाँ।
2: पिक्स कहते हैं, उसमें पाया जाता है। लेकिन बाई चांस ये किसी ना किसी तरीके से मेक्सिको में इंसानी उसमें जरिए में आ गया।
1: अच्छा।
2: तो ये इंसान जब मेक्सिको से नॉर्थ इंडिया में मुंतकिल हुए, तो सबसे पहले स्वाइन फ्लू नॉर्थ इंडिया में और चाइना वगैरह मुकामात पे हुआ।
1: अच्छा।
2: अब तो हमारे हिंदुस्तान में भी स्वाइन फ्लू आ गया है। तो
1: हाँ।
2: स्वाइन फ्लू दरअसल इंसान का वायरस नहीं है, वो सुअर या पिक्स का है जो इसमें दाखिल होता है। इसकी खसूसियत यह है कि बिल्कुल इन्फ्लुएंजा की तरह रहता, खांसी जुकाम नज़ला,
1: हाँ।
2: जिस्म में दर्द और हाई टेम्परेचर।
1: अच्छा।
2: मगर इसमें खसूसी बात यह है कि एक मरतबा स्वाइन फ्लू हुआ तो ये ख़तरनाक भी हो सकता है। और ये और एक ख़ास बात यह है कि इसमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी होता है, जो आमतौर से इन्फ्लुएंजा में नहीं होती। गैस्ट्रोएंटेराइटिस मतलब खय और दस्त आना।
1: अच्छा।
2: तो फ़ौरन से इसकी तशखीस होना, फ़ौरन से इसका इलाज होना, वरना ये छोटी उम्रों में, जैसा 4-5 साल उम्र से लेके बड़ी उम्र तक, मतलब जवानी तक के 20-22 साल तक के, ये जानलेवा भी हो सकता है। और ये बड़ी उम्र में बहुत कम पाया जाता है।
1: अच्छा, तो इसमें डॉक्टर साहब फिर डॉक्टर को समझ में कैसा आएगा कि
2: हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तो इसकी तशखीस होती है, इसके टेस्ट होते हैं, स्वाइन फ्लू टेस्ट। वो टेस्ट में अगर ये पॉजिटिव आया तो समझो स्वाइन फ्लू है, वरना हम समझें कि ये बिल्कुल ही ऑर्डिनरी इन्फ्लुएंजा है। तो इसके गवर्नमेंट ने चंद मुकामात रखे हैं, जैसा नारायणगढ़ का सरकारी दवाखाना है।

0: कोठी का सरकारी दवाखाना है,
1: जी
0: एरागढ़ का सरकारी चेस्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पे आप रुजू हो सकते हैं। भाई मुझे इन्फ्लुएंजा फीवर जैसा दिख रहा है, लेकिन आप चाहो तो मेरा टेस्ट करके, अगर स्वाइन फ्लू हो तो मुझे और मेरे तमाम बिरादरी को बचाएं, क्योंकि ये हाईली इन्फेक्शस होता है और
1: जी
0: ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, यानी एक दूसरे से बात करने से, और हाथ से भी होता है। जैसे
1: अच्छा
0: हाथ अगर किसी से मिलाएं जो स्वाइन फ्लू के पेशेंट से, तो
1: ओ
0: हाथ से भी जाता है। तो इसलिए हम लोग डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि भाई तुम दस्ती रखो, और
1: हाँ
0: जो पेशेंट होता है उसको कहते हैं कि भाई नकाब लगाओ, या आप उसके ऊपर एक कवर कर लीजिए, जैसे
1: हाँ
0: ऑपरेशन के वक्त में हम लोग ये लगाते
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: और हाथ पैर भी जो है आप साफ सुथरे रखें, और बार बार अपने हाथ धोएं।
1: जी अगर डॉक्टर साहब हाथ किसी से मिलाएं और इस किस्म के कोई परेशानी आ गई तो फिर तो यानी बहुत ही ज्यादा मुसीबत हो
0: नहीं तो मैं
1: जाएगी
0: आपसे अर्ज किया ना कि आप किसी ऐसे शक है कि आपको इस शख्स को स्वाइन फ्लू है, तो आप अपना हाथ धो लिया कीजिए।
1: ये। अच्छा तो ठीक है फिर। और एक बात ये डॉक्टर साहब
0: जी
1: कि ये जो आपने कहा कि मच्छर से ये हो जाता है
0: जी
1: उसके
0: मच्छर से डेंगू
1: बाद,
0: भी होता है।
1: अच्छा डेंगू भी होता
0: जी
1: है, तो डॉक्टर साहब मैंने सुना कि डेंगू बुखार बहुत ही ज्यादा यानी मुसीबत का कारण होता है।
0: देखिए, जैसा चिकनगुनिया होता है,
1: जी
0: जैसा स्वाइन फ्लू है खतरनाक, चिकनगुनिया और डेंगू एडिस इब्जेटाइम मच्छर से ही होता है।
1: अच्छा
0: लेकिन चिकनगुनिया में खास बात यह है कि शदीद बुखार एकाएक, यानी कल आपसे दावत में कोई शख्स मिला,
1: जी
0: दूसरे दिन बोलेगा साहब मेरे पूरे जोड़ों में दर्द है, मैं उठ नहीं सकता, मैं हाथ पैर नहीं उठा सकता, क्या मुझे फालिज हो गया, गौर से देखिए।
1: अरे बाप
0: तो
1: रे,
0: हम ऐसा समझते हैं कि कोई दूसरा आदमी समझेगा अरे ये झूठ बोल रहा है, लेकिन हकीकत ये है चिकनगुनिया फीवर में बहुत तेज़ बुखार और बहुत जॉइंट्स में दर्द होता है।
1: अच्छा
0: इसी
1: डॉक्टर
0: तरह,
1: साहब,
0: माफ़ करना, इसी
1: हाँ
0: तरह डेंगू में भी इसी तरह का होता है, लेकिन
1: हाँ
0: डेंगू की तशखीस के लिए हम ब्लड टेस्ट करा के देख सकते हैं।
1: जी नहीं डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाह रही
0: जी
1: थी कि एक जो ने बुखार है
0: जी
1: वो ज्यादा खतरनाक होता है
0: जी
1: तो वो कौन सा
0: वो
1: है?
0: है डेंगू।
1: डेंगू।
0: जी
1: अच्छा जिसमें पेशेंट मरने के करीब हो जाता
0: उसकी
1: है।
0: वजह क्या है
1: जी
0: कि इसमें एक प्लेटलेट जो इंसान को खुदा ने दिया है,
1: जी
0: जो खून मुंजमद होता है, यानी अगर कोई अपना
1: हाँ
0: हाथ अगर कट जाए
1: जी
0: या
1: जी
0: पत्ती से बाय चांस कट जाए तो खून
1: जी
0: मुंजमद होके वो बंद हो जाता है, लेकिन इसमें प्लेटलेट कम हो जाते हैं
1: हाँ
0: तो खून के मुंजमद होने की सलाहियत खत्म हो जाती है। तो उम्र छोटी उम्र में बच्चे खुसूसन, उसको
1: जी
0: हम लोग हेमरेजिक डेंगू कहते हैं, यानी
1: अच्छा
0: नाक से, मुंह से, दांतों से, जिस्म पे छोटे छोटे छोटे खून के धब्बे आ जाते हैं, तो
1: हाँ
0: ये
1: हाँ
0: डेंगू फीवर हुआ, ये खतरनाक होता है।
1: अच्छा। तो डॉक्टर साहब फिर ये जो आपने कहा कि जिस्म पे छोटे छोटे धब्बे आ जाते
0: जी
1: हैं तो ये क्या स्मॉल पॉक्स वगैरह की
0: हाँ,
1: टाइप है या
0: देखिए
1: क्या?
0: बहुत सारी ये जो बीमारियां होती हैं वायरस
1: जी
0: की, उसको
1: जी
0: एग्जेंथेमेटस कहते हैं।
1: जी
0: एग्जेंथेमेटस मतलब जिस्म के ऊपर धब्बे आना।
1: जी
0: तो बचपन में आप छोटे बच्चों में देखते हैं कि खसरा या मीजल्स,
1: हाँ
0: या आम जबान में गोबरी कहते हैं,
1: जी हाँ
0: ये एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, यानी आता है और 3-4 दिन, 8-10 दिन में वो ख़त्म हो जाता है,
1: हाँ
0: और अगर रेजिस्टेंस कम रहा तो निमोनिया वगैरह भी हो सकता। उसी
1: अच्छा
0: तरह चिकन पॉक्स है,
1: जी
0: तो
1: हाँ
0: चिकन पॉक्स यानी कंकर पत्थर।
1: ये
0: ये
1: तो डॉक्टर
0: जी
1: साहब अब खत्म हो रही है शायद
0: नहीं,
1: या फाल
0: देखिए चिकन
1: हाँ
0: पॉक्स भी खत्म हो रही है क्योंकि उसका भी इलाज है और उसका वैक्सीन भी है। चिकन
1: जी
0: पॉक्स का वैक्सीन है, और उसी तरह से एक और चीज़ होती है स्मॉल पॉक्स।
1: जी
0: तो
1: हाँ
0: स्मॉल पॉक्स तो 1980 में वर्ल्ड से गायब हो गया है,
1: जी
0: तो हमारे लिए खुशकिस्मती है। और साइंटिस्ट, हमारे साइंटिस्ट जो टीका लगाए थे, बनवाए थे,
1: जी
0: स्मॉल पॉक्स का टीका आपने भी लिया, मैंने भी लिया,
1: हाँ
0: और 1980 तक के जितने लोग टीके लिए, उसके
1: जी
0: बाद से हमारे को शुक्र है अल्लाह का कि स्मॉल पॉक्स दुनिया से इरेडिकेट हो गया।
1: जी
0: तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि जब भी कोई वबा फैलती है, फैलो या ना फैलो, तो
1: जी
0: आप बराबर अपने वैक्सीन्स लेते रहें। जैसा कि पोलियो वैक्सीन है, तो
1: जी
0: पोलियो के ओरल ड्रॉप्स हैं, सारे टीवी पे और रेडियो पे और इसमें अखबारों में इश्तहार देते हैं कि अपने बच्चों को ले जाओ, सिर्फ 2 बूंद का सवाल है।
1: जी हाँ
0: जी
1: तो डॉक्टर साहब ये पोलियो भी क्या वायरल है?
0: जी हाँ, मैं जो आज गुफ्तगू आपसे कर रहा हूँ, चूंकि
1: जी
0: आपने टॉपिक मुझे वायरल इन्फेक्शन की दी है, तो पोलियो भी वायरल इन्फेक्शन है। इसमें ये न्यूरोट्रोपिक वायरस है, ये
1: जी
0: सेंसरी नर्व्स से और मोटर नर्व से खुसूसन स्पाइनल कार्ड तक जाता है, और इससे फौरन से मरीज को जो है फ्लैक्सिड पैरालिसिस, यानी दो पैर गिर जाते हैं, कभी हाथ गिर जाता है, कभी
1: हाँ
0: चेहरा
1: हाँ
0: जाता है। और इतनी ये खतरनाक बीमारी है कि एक मरतबा पोलियो किसी बच्चे को हो गया तो
1: जी
0: उम्र भर के लिए उसको मुसीबत है, ताकि कि आप उसका फौरन से इलाज ना करें।
1: अच्छा डॉक्टर साहब ये बड़ों को भी होता है क्या?
0: बड़ों को बहुत कम होता है, उसकी वजह है कि हर्ड इम्यूनिटी, यानी छोटी छोटी इम्यूनिटी हमको सोसाइटी में लगते रहती, तो
1: जी
0: इसलिए हम अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन बच्चों के बचाव के लिए तो ज़रूर आपको पोलियो ड्रॉप्स डालना है, और खुसूसन ऐसे फ्लोटिंग पॉपुलेशन जो बाहर जाना चाहते हैं, जैसे स्वाइन फ्लू है, हज को जाते हैं लोग, बाहर तफरी को जाते हैं, वर्ल्ड फिरते हैं, टूरिस्ट हैं, इन लोगों को तो ये ड्रॉप्स और ये स्वाइन फ्लू का टीका तो

0: लेना चाहिए।
1: जी अच्छा डॉक्टर साहब, और एक बात ये पूछना चाह रही थी
0: जी
1: मैं कि आपने कहा कि सर से पैर तक,
0: जी
1: तो मतलब सर से पैर तक तो क्या
0: ब्रेन
1: दिमाग में, ब्रेन में भी आ
0: जी,
1: जाता है
0: आपने
1: वायरस?
0: सुना होगा चंद साल पहले नेल्लूर में एक वबा चली,
1: जी
0: वो वबा फिर हैदराबाद में आई, उसको हम
1: जी
0: लोग जैपनीज इनकेफ्लाइटिस कहते हैं, तो
1: जी
0: वो दिमागी बुखार होता है, ये भी जानलेवा होता है जब तक कि आप इलाज ना हो। तो लोग कई लोग एपिडेमिक की तरह सवों से लोग मरते हैं, तो वो जैपनीज इनकेफ्लाइटिस है, ये भी बच्चों में पाया जाता है।
1: अच्छा, तो ये क्या बड़ों में नहीं होता?
0: बड़ों में भी हो सकता है, लेकिन मैंने जैसा अर्ज किया बड़ों की मुदाफ़ती क़ुव्वत ज़्यादा रहती है, इसलिए
1: जी
0: कम पाया जाता
1: तो
0: है।
1: डॉक्टर साहब ये समझेंगे कैसा कि ब्रेन फीवर
0: वो
1: है?
0: तो टेस्ट के बाद ही, लेबोरेटरी टेस्ट के बाद ही हमको पता चलेगा, और क्लिनिकल एग्जामिनेशन,
1: जी
0: जब हम
1: जी
0: क्लिनिकल डॉक्टर्स के जो जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो तजुर्बेकार डॉक्टर्स हैं, या
1: जी
0: आरएमपी और गांव के डॉक्टर्स नहीं, जो पढ़े लिखे जो इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं, फ़ौरन पहचान लेते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन से।
1: जी अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि मच्छर से वायरल फीवर आता है,
0: जी
1: तो क्या घर में जिस तरह लोग पालतू जानवर रखते हैं जैसा
0: जी
1: कुत्ता है, बिल्ली है या बर्ड्स हैं, वो उनसे भी आता है क्या अपने में?
0: मुझे अच्छा लगा आपके क्वेश्चन से कि आप मच्छर से कहाँ चले गए।
1: जी
0: बिल्कुल आपने सही सवाल किया और बिल्कुल आपने बजा फरमाया आज के सेशन में।
1: जी
0: देखिए कुत्ता और बिल्ली, खुसूसन कुत्ता, बिल्ली से
1: जी
0: तो कम,
1: हाँ
0: इससे होता है रेबीज। आपने
1: अच्छा,
0: सुना होगा कि कुत्ते काटे का मरीज बचता
1: ओह
0: नहीं,
1: डॉक्टर
0: ये
1: साहब
0: 100% उसकी डेथ होती है।
1: वो तो बड़ी
0: जी
1: परेशानी
0: हाँ,
1: की
0: तो
1: बात है फिर।
0: जी रेबीज जो है, रेबिड डॉग्स जो होते हैं,
1: जी
0: स्ट्रीट डॉग्स,
1: जी
0: इसलिए गवर्नमेंट की एक चलती है ना कि भाई अपने अपने पूरे कुत्तों को ले जाके रजिस्टर कराओ वेटरनरी हॉस्पिटल में,
1: जी
0: उनको
1: हाँ
0: बिल्ला लगाओ बल्दिया की तरफ से, और
1: हाँ
0: उनको जो है जैसा तरीका होता है प्रोसीजर, उसको रेबीज वैक्सीन देना चाहिए। अब
1: जी
0: स्ट्रीट डॉग्स हैं, लोग ऐसी गलियों में छोड़ देते हैं, कभी गलती से बच्चों को या बड़ों को पालता है, तो ये न्यूरोट्रोपिक वायरस है जो काटने की जगह से लेके स्पाइनल कार्ड तक जाता है। और आप देखिए अगर कोई कुत्ते काटे के मरीज को, तो आप
1: जी
0: बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, जैसे उसके करीब में पानी का ग्लास लाया जाता है तो वो एक्चुअली चिल्लाने लगता है, तो लोग कहते हैं कुत्ते की तरह चिल्ला रहा। उसकी मतलब वजह यह है कि हाइड्रोफोबिया, यानी पानी देखते उन्हें उछलने कूदने लगता है और इतना परेशान हो जाता है, तो
1: जी
0: आखिरकार इसको ले आके क्वारंटीन करते हैं। क्वारंटीन मतलब उसको सेपरेट करना है, उसके
1: जी
0: लिए हैदराबाद में एक फीवर हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर आप शरीक कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए,
1: जी
0: कुत्ते काटे का इलाज Day 1, Day 0, यानी
1: जी
0: जिस दिन काटा उसी वक्त उसी दिन से शुरू करके 5 से 7 इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो 100% नहीं तो 90% क्यूरेबल है। अगर ये
1: जी
0: न लें तो 100% डेथ होती है। अगर एक मरतबा रेबीज हुआ तो किसी सूरत से इंसान आज की दुनिया में नहीं बच सकता।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने सुना कि वो कुत्ता जिसको काटता है
0: जी
1: उसको मतलब कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे ऐसा नजर आते हैं, क्या
0: जी
1: ये सच है डॉक्टर साहब? ऐसा क्यों?
0: ऐसा नहीं है, एक दीवानगी की हालत रहती उस कुत्ते को,
1: जी
0: इसीलिए तो कहते हैं कि दीवाना कुत्ता काटा क्या, तो
1: अच्छा
0: उसका
1: अच्छा
0: मतलब
1: अच्छा
0: ये होता है कि कुत्ता इराटिक बिहेवियर करता है,
1: हाँ
0: भागता है, इधर जाता है उधर जाता है,
1: हाँ
0: उसे हम समझ जाते हैं कि इसको रेबीज होगा, और उसके लॉब में इन्फेक्शन होता, उसके काटे में इन्फेक्शन होता, और जहाँ पे वो काटता है अगर वो नर्व्स के करीब हो, जैसा नर्व्स यानी स्पाइनल कॉर्ड, और
1: जी
0: खसूस दिमाग के करीब हो, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है।
1: अच्छा, तो अच्छा डॉक्टर साहब आपने कहा कि इन सब चीज़ों को तो मतलब प्रॉब्लम आती है,
0: जी
1: लेकिन मम्स जो होते हैं
0: जी
1: क्या वो भी वायरल है? मम्स जो आते
0: आप
1: हैं?
0: एकदम खतरनाक बीमारी से बहुत मामूली मर्ज की तरफ
1: जी
0: मुतवज्जे हुए हैं,
1: जी
0: मुझे
1: हाँ
0: अच्छा लग रहा है कि आप कुछ इस मामले में शुद्बुद रखते हैं, कुछ मालूमात रखते जरूर हैं, या आपके सामने कुछ घरेलू केसेस आते होंगे।
1: जी
0: देखिए
1: हाँ
0: मम्स जो है पैरोटिड ग्लैंड्स का है,
1: जी
0: हलक के आजू बाजू हमको खुदा ने थूक के ग्लैंड्स दिए हैं, तो
1: जी
0: मम्स जो है ये पैरोटिड ग्लैंड्स दोनों तरफ होते हैं कल्ले के, तो वहाँ होते हैं, उसकी तशखीस ये है कि कान का जो लोब होता है वो चढ़ जाता है और यहाँ पे काफ़ी सूजन आती है, वो
1: हाँ
0: एक तरफ भी हो सकती है दो तरफ भी हो सकती है, लेकिन
1: अच्छा
0: इसकी एक खसूसियत ये है कि इसमें बुखार आता है, दर्द होता है, न गले के अंदर नहीं होता, गले के बाहर कान के नीचे होता है, लेकिन
1: जी
0: इसमें मर्दों में टेस्टिकल्स यानी नीचे के हिस्से में भी होते हैं, पोतों में भी और औरतों में ओवरीज में भी इन्फेक्शन होता है, इसलिए कभी वो पेट के दर्द से भी और नीचे पेट के दर्द से भी आ सकते हैं।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब फिर ये मतलब इसका इलाज क्या है?
0: मम्स का
1: यानी
0: इलाज है सिम्टोमेटिक इलाज कीजिए, ये कोई जानलेवा भी नहीं रहता और आखिरकार ये ठीक हो जाता
1: नहीं डॉक्टर साहब, सांस लेने में जो
0: है। नहीं
1: परेशानी होती
0: सांस
1: है
0: लेने में
1: उससे?
0: परेशानी मम्स से नहीं होती, वो
1: जी
0: टॉन्सिलाइटिस है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है,
1: अच्छा, तो मतलब कोई ऐसी कोई परेशान
0: परेशानी की
1: होने
0: बात
1: की
0: नहीं
1: बात
0: है।
1: नहीं?
0: जी
1: अच्छा, तो अच्छा डॉक्टर साहब एक और बात ये पूछना चाह रही
0: जी
1: थी मैं
0: जरूर
1: कि ये एड्स जो आजकल सुना जा रहा है कि
0: जी
1: एड्स हो गया
0: जी
1: एड्स, तो क्या ये भी वायरल है?
0: जी हाँ, आपने गुफ्तगू का मोड़ बहुत खतरनाक किया है।
1: जी
0: एड्स एक जानलेवा

0: मर्ज है एक लिहाज से, कि
1: जी
0: अगर आप उसका इलाज शुरू शुरू शुरू शुरू में ही नहीं करें तो
1: जी
0: किसी सूरत से मरीज कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन से मरता है, जिसको हम लोग अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शन कहते हैं।
1: जी
0: देखिए एड्स है अक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये एक छोटा सा वायरस है जो ऑर्डिनरी अगर कहीं पड़ा हो कहीं भी तो इन्फेक्शन नहीं करेगा, लेकिन एक मरतबा इंसान के सेल में अगर दाखिल हो गया
1: जी
0: तो एक हंगामा बपा कर देता है। उसकी वजह ये है कि एड्स का ये 3-4 तरीक़ों से इंसान में दाखिल होता है।
1: जी
0: जैसा कि ड्रग यूज़र्स हैं जो
1: हाँ
0: हैबिचुअल ड्रग्स लेते
1: जी
0: हैं, मुख्तलिफ इंजेक्शन लेते हैं, एक ही सिरिंज दूसरे को देते हैं, दूसरे ही सिरिंज तीसरे को देते हैं, तो ये सिरिंज से भी होता है।
1: जी
0: ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अगर ठीक तरीके से एड्स का स्क्रीनिंग नहीं कर लिए, एड्स का अगर टेस्ट करके ब्लड ना दे जाए तो बेचारे मासूम जिसको ब्लड मिला उसको
1: जी
0: एड्स हो सकता है। और तीसरा जो अहम है वो तो सेक्स है, सेक्स की वजह से भी केयरफुल सेक्स ना किया जाए तो उससे भी एड्स होता है।
1: जी
0: जी
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात पूछना चाह
0: जी
1: रही थी मैं,
0: जी
1: वो ये कि जॉन्डिस,
0: जी
1: यानी जॉन्डिस होते ही वो लोग परेशान हो जाते
0: जी
1: हैं कि सफ़ेद हुआ पीला
0: वो पीला हुआ
1: हुआ,
0: जी
1: तो अब ये सफ़ेद और
0: उस
1: पीला क्या
0: जी
1: चीज़ है
0: देखिए उसकी
1: इस?
0: वजह ये है, सफ़ेद पीला तो कुछ सफ़ेद तो कोई होता नहीं, सफ़ेद तो खैर खून की कमी से भी आंखें सफ़ेद नज़र आती हैं, और
1: जी
0: जो पीला हो तो हकीकत में वो जॉन्डिस है। तो जॉन्डिस भी वायरस इन्फेक्शन है, वायरस ए, वायरस बी और वायरस सी, ये
1: जी
0: भी हेपेटाइटिस उसी से होता है वायरस से, और इसके इलाज के लिए बाकायदा इलाज होता है, सिम्टोमेटिक भी होता है स्पेसिफिक भी होता है, यानी बाकायदा इलाज होगा मरीज के लिए और उसके सपोर्ट के लिए भी। लेकिन लोग जो आजकल, मैं खुसूसन चूंकि ये प्रोग्राम रेडियो का है, मैं
1: जी
0: लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि
1: जी
0: गैर ज़रूरी है जड़ी बूटी और आँख में दवा लगाना, वो फलां
1: हाँ
0: जगह दवा दी जाती है,
1: जी
0: प्लीज़ वो
1: जी
0: मत करिए, उससे आप अपनी जान को ख़तरे में डाल रहे हैं। अच्छे एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूशन में या अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर से मिलिए तो जॉन्डिस का ट्रीटमेंट 100% है, लेकिन अगर लेट हो गया तो फिर वो हेपेटाइटिस परमानेंट हो जाएगी और एड्स उसके जरासीम दिमाग तक जाके फिर वो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होगा, डेथ भी हो सकती है।
1: नहीं डॉक्टर साहब, बाज़ लोग ये बोलते हैं
0: जी
1: कि डॉक्टर मतलब एलोपैथिक में
0: जी
1: इसका कोई दवाई है ही नहीं।
0: 100% इसकी दवा है, मैं उसकी बराबर वकालत करूंगा और यह अर्ज करूंगा कि जॉन्डिस का ट्रीटमेंट है, और जो ट्रीटमेंट जो पुराने नुस्खे और फला फला हैं वो हम जानते भी नहीं और हम
1: जी
0: उसकी राय देते भी नहीं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मतलब जॉन्डिस होता है जैसा
0: जी
1: आपने कहा,
0: जी
1: तो ये मरने तक मतलब मरने की हालत तक क्यों पहुंचाता है
0: उसकी वजह
1: पेशेंट?
0: यह है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस का मतलब आंखें पीली देखते नहीं, पेशाब का इम्तिहान नहीं कराते, खून का इम्तिहान नहीं कराते, तो उसकी वजह से भी होता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक बच्चा है जिसको मतलब जॉन्डिस, या आपने कहा कि हेपेटाइट बी ए बी
0: जी
1: जो है,
0: जी
1: तो वो उसकी तबीयत ठीक होती ही नहीं, ये
0: वो
1: क्यों?
0: हेपेटाइटिस बी है, वो
1: अच्छा
0: तो हेपेटाइटिस बी में होता है कि लो ग्रेड टेम्परेचर रहता, वो एक कैंसर की तरह होता, वो लीवर को ख़राब करते रहता, लेकिन उसका भी इलाज है, थोड़ा कॉस्टली इलाज है, उसको इंटरफेरॉन वगैरह दवा दी जाती है इंस्टीट्यूशन में रख के, हॉस्पिटल में रख के,
1: जी
0: लेकिन वो मरीज़ ऐसे होते हैं HbA Ag पॉजिटिव जिसको बोलते हैं,
1: जी
0: आपने जैसा अभी थोड़ी देर पहले फरमाया कि उसमें सफ़ेद इरखान होता है, यानी नज़र तो नहीं आता आँखों में
1: हाँ
0: लेकिन ब्लड टेस्ट में पॉजिटिव आता, उसकी वजह है उसमें लो ग्रेड टेम्परेचर रहता, और ऐसे लोगों को हम लोग ट्रैवलिंग के लिए भी अवॉइड करते हैं क्योंकि दूसरों को लगा सकते हैं।
1: अच्छा, तो वो भी मतलब लग जाता है
0: लगता है,
1: अगर?
0: लगता है ये जितने भी जॉन्डिस हैं एक से दूसरे को लगते हैं। जी
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: तो लगता है बोलता, हाथ मिलाने से लगता
0: हाथ
1: है?
0: मिलाने से लगता है, उनके एक्सक्रीटा है
1: अच्छा
0: उसकी इजाबत के जरिए, उसके पेशाब के जरिए, उसके खून के जरिए फैलता
1: ओहो,
0: है,
1: अच्छा,
0: इंजेक्शन से भी ये फैलता है, एक
1: हाँ
0: इंजेक्शन से अगर सिरिंज डिस्पोजेबल ना यूज़ किया जाए तो दूसरे को लग सकता है।
1: हाँ तो फिर डॉक्टर साहब, इसके लिए क्या मतलब आपने कहा कि
0: उसका
1: जिगर का प्रॉब्लम है,
0: जी
1: तो जिगर का इलाज करवाना चाहिए?
0: जाहिर है, फिर लीवर का ऑन दी होल इलाज करना, देखिए
1: जी
0: अल्लाह ने हमको जिगर एक ही दिया है,
1: जी हाँ
0: कल्ब एक ही दिया है,
1: जी
0: तो
1: हाँ
0: हम कहते हैं कि कम से कम दो गुर्दे हैं, दो आंखें हैं, तो कल्ब और जिगर एक है, तो उसकी हिफाजत कीजिए, जिगर को जिगर लगा के देखिए।
1: जी तो डॉक्टर साहब, ये सब वायरल
0: इन्फेक्शंस पे आते हैं।
1: इन्फेक्शंस के लिए
0: जी
1: है,
0: हाँ
1: तो मैं ये और ये जानना चाह रही थी
0: जी
1: कि अब इसके साथ साथ
0: जी
1: हमारी जो जिल्द है
0: जी
1: वो जिल्द से भी मतलब वायरल
0: जी हाँ जिल्द में जो
1: पहुंचता
0: वायरल
1: है?
0: इन्फेक्शन होते हैं, सबसे ऑर्डिनरी इन्फेक्शन जो है वो वार्ट्स हैं, WARTS वार्ट्स, यानी छोटे छोटे ग्रोथ्स आते हैं जो प्लांटर एरिया मतलब पैर में भी होते हैं, जिस्म में भी होते हैं, बाद लोगों को चेहरे पे भी होते हैं, बाद लोगों को पीठ पे भी होते हैं, वार्ट्स हैं, तो वार्ट्स भी वायरल इन्फेक्शन है, लो आई मीन वेरुलेंट है, यानी कम से कम इसका नुकसान होता है, इसलिए खाली ये बदनुमा ही पैदा करता, इसको आप कोई तरीके से केमिकल से या कॉटरी से निकाल सकते हैं। अब जिल्द में पाया जाता है, देखिए हर्पिस, हर्पीस।

0: देखे होंगे कि बाद मरतबा बाज़ पेशेंट्स को एक खिते से छोटे छोटे कंकर पत्थर की तरह छाले आते हैं, तो ये है न्यूरोट्रोपिक। तो जो सेंसरी नर्व्स हैं जो पेन को कबूल करते हैं वो
1: जी
0: शुरू होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से और ख़त्म होते हैं या स्टर्नम में सामने। तो
1: जी
0: बराबर वो वायरल इन्फेक्शन नर्व से शुरू होकर नर्व के ख़त्म पे ख़त्म होता है। और इसमें दो बातें होती हैं, तीन बातें होती हैं। एक तो ये कि प्री मॉनिटरी सिम्टम्स, यानी छाले आने से पहले शदीद बुखार आता है, हल्का सा दर्द होता है,
1: जी
0: छाले आने के बाद में शदीद दर्द होता है, और अच्छा होने के बाद भी पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलजिया होता है जो कई कभी कई हफ्ते और कई महीनों तक चलता है। ये
1: ओहो
0: भी वायरस इन्फेक्शन है। आपने देखा होगा मरीजों को जो है पहले चेस्ट पेन से आते हैं,
1: हाँ
0: अरे वो
1: हाँ
0: खाली दर्द है करके हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन 2 हफ्ते के बाद वो छालों से आता है।
1: हाँ
0: तो ये भी
1: हाँ
0: खतरनाक मर्ज है।
1: तो ये आता किससे है
0: ये भी
1: डॉक्टर?
0: वायरस है जो न्यूरोट्रोपिक है, वो
1: अच्छा
0: नर्व को पिकअप कर

0: तो ये आता किससे है
1: ये भी
0: रोको?
1: वायरस है जो न्यूरोट्रोपिक है, वो नर्व को
0: अच्छा
1: पिकअप करता है और
0: अच्छा
1: सिर्फ
0: अच्छा
1: नर्व को इन्फेक्ट करता है,
0: अच्छा
1: नस
0: अच्छा
1: को।
0: अच्छा तो अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं एक बात ये बोलूंगी
1: जी
0: कि
1: जरूर
0: हमारे जो सुनने वाले हैं
1: जी
0: उनको आप ये बताइएगा
1: जी
0: कि ये जितना भी वायरल इन्फेक्शन है
1: जी
0: और ये जो कुछ भी मतलब आजकल पूरे माहौल में मौजूद है,
1: जी
0: तो इससे हम बचें किस तरह?
1: देखिए, हर वायरल इन्फेक्शन का कहीं ना कहीं किसी तरीके से भी वैक्सीन पाया जाता है। अब स्वाइन फ्लू का वैक्सीन भी या तो आ रहा है या आने वाला है,
0: जी
1: चंदी चंदी हफ्तों में आ जाएगा इंडिया में, लेकिन अमेरिका में तो यूज़ हो रहा है। सबसे पहले वैक्सीन लें, जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले अर्ज किया कि स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन इतना अच्छा चला कि वो दुनिया से गायब हो गया, इरेडिकेट हो गया। हम
0: जी
1: चाहते हैं पोलियो भी हो जाए
0: जी
1: तो
0: हाँ
1: पोलियो का वैक्सीन भी दिया जाए। हर चीज़ का वैक्सीन है, स्मॉल पॉक्स का, पोलियो का और चिकन पॉक्स का, हर चीज़ का वैक्सीन है। और मैं आपसे अर्ज करूँगा कि मीडिया,
0: जी
1: खुसूसन रेडियो और टीवी और पेपर्स और जनरल पैम्फलेट्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मुख्तलिफ जहाँ पे पोस्टर्स लगाए जाते हैं, इनको
0: जी
1: गौर से देखिए और अच्छे इंस्टीट्यूशन जाइए। गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा इंतज़ाम हर बीमारी, हर वायरल इन्फेक्शन का वैक्सीन लगाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो आप
0: जी
1: उसको फॉलो करिए।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये सब तो बताया,
1: जी
0: लेकिन मतलब इसमें गिज़ा
1: जी
0: या मतलब खाने में
1: जी
0: किस किस्म की एहतियात करनी
1: देखिए,
0: चाहिए?
1: गिज़ा की एहतियात ये करनी है कि
0: जी
1: बहुत सारी चीज़ें जो है गिज़ा के किसी ना किसी तरीके से इजाबत या स्टूल से कांटेक्ट में आ जाते हैं,
0: जी
1: तो उससे हो जाएगा पोलियो, उससे
0: जी
1: हो जाएगा गैस्ट्रोएंटेराइटिस।
0: अच्छा
1: और पानी के ज़रिए, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि ईडिस एजुटाई मच्छर जो है पानी में पाया जाता है, तो पानी में एक तो ठहरा मत रहने दीजिए घरों में
0: जी
1: और एयर कूलर्स में और घड़ों में, सूखी बोली में थोड़ा पानी रह जाता है अतराफ
0: जी
1: में, जो गंदा पानी रहता है उससे भी आपको दूर रहना चाहिए। और
0: जी
1: ग़िज़ा अच्छी से अच्छी लेना चाहिए, अच्छे वाइटामिन्स लेना चाहिए, ज़रा सी बीमारी पे डॉक्टर से रुजू होना चाहिए। आपका अगर रेजिस्टेंस पावर अच्छा रहा तो आप बहुत सारे वायरस को आप ख़त्म कर सकते हैं अपनी मुदाफ़ती क़ुव्वत से।
0: जी तो फिर डॉक्टर साहब, इसके अलावा और कुछ बताना चाहेंगे आप हमारे सुनने वालों को?
1: जी देखिए, मैं एक ही बात अर्ज़ करूँगा
0: जी
1: कि वायरल इन्फेक्शंस सिर्फ एक ही इन्फेक्शन है आज की दुनिया में जो
0: जी
1: ख़तरनाक है, वो है एड्स।
0: जी
1: एड्स के लिए मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि अगर सुनने वाले सुने तो अपने ख़ानदानी लोगों से ईमानदारी से रहें, गैर जगहों पर न जाएं, तो
0: जी
1: एड्स से बच सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, जो बच्चों में वायरल इन्फेक्शन है तो उनका फ़र्ज़ है कि शुरू पैदा होते ही जो टीके लगाए जाते हैं या पोलियो दिया जाते हैं उनके तरफ तवज्जो करें। नंबर
0: जी
1: थ्री, अपनी ग़िज़ा अच्छी रखें और अपने आप को अवेयरनेस रखें कि क्या क्या वायरल इन्फेक्शन दुनिया में पाए जाते हैं, उससे कुछ ना कुछ अवेयरनेस पैदा करना चाहिए।
0: जी तो फिर डॉक्टर साहब, हम अपने सुनने वालों से इजाज़त लेते हैं।
1: जी
0: आपने अपनी सारी मसरूफियात के बावजूद
1: जी
0: आप यहाँ आए
1: जी
0: और हमारे सुनने वालों को बहुत ही अच्छी अच्छी काम की बातें बताई आपने,
1: जी
0: तो इसके लिए सुनने वालों की जानिब से
1: जी
0: मैं आपका शुक्रिया अदा
1: जी
0: करती
1: जी
0: हूँ।
1: शुक्रिया,
0: आदाब अर्ज़।
1: आदाब।
2: सामिन इकराम, अभी आपने प्रोग्राम डॉक्टर माइक पर में सुना डॉक्टर राम प्रसाद को। डॉक्टर राम प्रसाद ने बहुत ही तफसील से वायरल इन्फेक्शन के बारे में बताया कि हम वायरल इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन होता क्यों है, उसका सबब क्या होता है, उसका इलाज क्या होता है। लेकिन डॉक्टर साहब ने साफ़ कहा आखिर में कि 100 बात की एक बात यह है कि अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी रेजिस्टेंट पावर आप मज़बूत रखिए, तो ये सब बीमारियाँ इन्फेक्शन खुद ब खुद आपसे दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और अपने क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मज़बूत बनाइए ताकि आप बीमार ना पड़ें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अब बारी हो चुकी है नगमों के सफ़र पे रवाना होने की। हाँ दोस्तों, मेरी मुराद है प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जाका जाते जासे। तो दोस्तों, हम इस सफ़र को शुरू करें, हम ये आपसे कहना चाहते हैं दोस्तों कि हम नगमे तो आपको सुनवाएंगे, लेकिन नगमों के बीच बीच में हम आज जिस टॉपिक पे, जिस उनवान पे बात करने वाले हैं, वो है मोहब्बत और शिकायत का रिश्ता। तो दोस्तों, मोहब्बत एक ऐसा खूबसूरत जज्बा है जिसके बगैर ज़िंदगी शायद कुछ अधूरी सी लगती है। लेकिन जनाब, मोहब्बत अगर ज़िंदगी में फूल खिलाती है तो साथ में दो चार कांटे भी ज़रूर देती है। और वो कांटे क्या हैं? अरे भाई, शिकायतें। मोहब्बत हो और शिकायत ना हो, कुछ ऐसा ही है।

जैसे चाय हो और उसमें चीनी ना हो। और बाज़ अवकात तो शिकायत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इंसान सोचता है कि मैं मोहब्बत कर रहा हूँ या रोज़ाना की बुनियाद पर अपना केस लड़ रहा हूँ। लेकिन सच ये है कि शिकायत भी अक्सर वहीं होती है जहाँ मोहब्बत होती है। जिससे कोई ताल्लुक़ ही ना हो उससे शिकायत भी कौन करे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, शिकायत ही से मिलते हैं मोहब्बत के मज़े पे हम, शिकायत ही से मिलते हैं मोहब्बत के मज़े पे हम, मोहब्बत जितनी बढ़ती है शिकायत होती जाती है। तो आइए इस खूबसूरत एहसास की इब्तिदा एक ऐसे नगमे से करते हैं जिसमें मोहब्बत भी है और दिल की बात भी। तो लीजिए समाप्त कीजिए ये प्यार भरा नगमा।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा में सुन रहे हैं प्यार भरे खूबसूरत नगमे। दोस्तों, अभी जो आपने नगमा सुना फिल्म में दिल का नगमा था, जिसे गाया था उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मोहब्बत और शिकायत की, कि दोनों एक दूसरे से लिंक हैं या क्या है। इन तमाम चीज़ों के बीच हमारी गुफ्तगू जारी है, नगमों के बीच बीच में हम इस पर बात करते रहेंगे। दोस्तों, मोहब्बत में भी एक अजीब चीज़ होती है कि जब हम किसी को चाहते हैं तो उसकी छोटी सी बात भी बड़ी लगती है। वो ज़रा सा मुस्कुरा दे तो पूरा दिन अच्छा गुजर जाता है, वो ज़रा सा नाराज़ हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे महकमे मौसमियात ने हमारे दिल पर बारिश की वार्निंग जारी कर दी हो। मोहब्बत में इंसान दूसरे की बातों को अहमियत देने लगता है, इसलिए शिकायत भी पैदा होती है, जैसे आपने फ़ोन क्यों नहीं किया, आपने मेरा मैसेज देखा तो जवाब क्यों नहीं दिया, आपको मेरी सालगिरह याद नहीं, और सबसे ख़तरनाक सवाल, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब यहाँ मर्द हज़रात ख़ास तौर पर मोहतात हो जाएं, क्योंकि इस सवाल का सही जवाब अक्सर उन्हें भी नहीं मालूम होता। तो मोहब्बत और शिकायत पे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन पहले सुनते हैं ये दिलकश नगमा।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा में, दिलकश प्यार भरे और ख़ूबसूरत फिल्मी नगमे। दोस्तों, मौसीकी और नगमे भी बहुत ख़ूबसूरत चीज़ हैं, हमें एक ऐसी दुनिया में लेके चले जाते हैं जहाँ थोड़ी देर के लिए हम टेंशन, गम, उलझन सबको भूल जाते हैं और थिरकने पर मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम शुरू में बात कर रहे थे मोहब्बत और शिकायत के सिलसिले में। तो दोस्तों, मोहब्बत में शिकायत का एक ख़ूबसूरत पहलू ये भी है कि शिकायत दरअसल कहती है, मुझे आपसे फ़र्क पड़ता है, अगर फ़र्क ना पड़ता तो खामोशी होती, शिकायत ना होती, इंतज़ार ना होता, किसी के एक लफ्ज़ से दिल ना दुखता। कभी कभी शिकायत मोहब्बत का दूसरा नाम बन जाती है। बस फ़र्क इतना है कि मोहब्बत कहती है आप मेरे हैं, और शिकायत कहती है तो फिर मुझे भूल क्यों गए। हालांकि हसरत मोहानी ने कहा है कि भूले थे न भूले हैं न भूलेंगे तुम्हें हम, भूले थे न भूले हैं न भूलेंगे तुम्हें हम, ऐसा न किया था न किया है न करेंगे। तो सामीन, हम भी आपकी खिदमत में नगमा पेश करना नहीं भूले हैं। तो फिर लीजिए, सुनिए ये गीत।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और मैं हूँ आपका दोस्त आरजे उसामा। हम खूबसूरत नगमों के सफ़र पे रवा दवा हैं और ऐसे नगमे आपको सुनवा रहे हैं दोस्तों जो यकीनन आपको बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। अभी जो आपने नगमा सुना वो फिल्म जुर्म से लिया गया था और आवाज़ थी कुमार शानू और साधना सरगम की। दोस्तों, हम शुरू से बात कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में गीत सुरीले गाते जा में मोहब्बत और शिकायत के सिलसिले में। तो एक खूबसूरत शेर मुझे याद आया, सोचता हूँ आपको सुना दूँ। गिला भी तुझसे बहुत है मगर मोहब्बत भी, गिला भी तुझसे बहुत है मगर मोहब्बत भी, वो बात अपनी जगह है ये बात अपनी जगह है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा पुराने गीतों में मोहब्बत भरी शिकायत भी बड़ी नफासत से की जाती थी। आज के ज़माने में तो बाज़ लोग शिकायत भी ऐसे करते हैं जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों। आपने कल मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, ये एक शिकायत है। और इस शिकायत में वो साथ में सबूत पेश कर देते हैं जैसे लास्ट सीन 11:40। पुराने ज़माने में महबूब के पास सिर्फ दिल था, लेकिन आज के ज़माने में महबूब के पास स्क्रीन शॉट भी है। खैर, बदलते वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं और हमें भी बदलना पड़ता है क्योंकि यही ज़िंदगी की रीत है। तो आइए इसी ख्याल के साथ अब सुनते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा। लीजिए, समाप्त कीजिए।

जी दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप सुन रहे हैं गीत सुरीले गाता जा में, खूबसूरत फिल्म नगमे। मुझे उम्मीद है कि आपको खूब मज़ा आ रहा होगा। दोस्तों, अभी जो नगमा आपने सुना वो फिल्म आशिकी से लिया गया था। कुमार शानू की आवाज़ में ये गीत आपने सुना। दोस्तों, इसमें है बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। ये सुनकर मुझे मतलब उर्दू शायरी का भी ख्याल आया कि आप अगर गौर करें तो उर्दू शायरी में महबूब का तसव्वुर बदलता रहा है। यानी महबूब ख्याली होता था, तसव्वुराती होता था, और वक्त के साथ साथ उर्दू अदब और उर्दू शायरी में भी कई तब्दीलियाँ आईं। यहाँ तक कि अख्तरुल ईमान को कहना पड़ा, मतलब यूँ कहना पड़ा कि तसव्वुराती और ख्याली छोड़िए। उनका शेर मैं आपको सुना रहा हूँ, अख्तरुल ईमान का, कि अब इरादा है कि पत्थर के सनम पूजेंगे, अब इरादा है कि पत्थर के सनम पूजेंगे, ताकि घबराएं तो टकरा भी सकें, मर भी सकें। तो दोस्तों, ये शायरी में बदलते रुझान की अक्कासी थी और अख्तरुल ईमान का ये खूबसूरत शेर मैंने आपको सुनाया। अब आते हैं टॉपिक पर। हमारी बात चल रही थी मोहब्बत और शिकायत के बारे में। दोस्तों, कभी कभी तो शिकायत का अंदाज़ भी मोहब्बत भरा होता है। सवाल में ही मोहब्बत छुपी होती है, जैसे इतनी देर कहाँ थे, इसका मतलब आपका इंतज़ार था। इसके अलावा एक और जुमला जो अक्सर हम सुनते हैं, मुझे बात नहीं करनी, इसका मतलब ये होता है थोड़ी देर मेरे पास बैठो, शायद मैं मान जाऊँ। मोहब्बत की ज़ुबान भी अजीब है सामीन। कभी अल्फाज कुछ कहते हैं और दिल कुछ और कहता है। बकौल शायर, शिकवा अपनों से किया जाता है गैरों से नहीं, शिकवा अपनों से किया जाता है गैरों से नहीं, आप कह दें तो कभी आपसे शिकवा न करें। दोस्तों, अब मैं आपको जो गज़ल सुनवाने वाला हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आपकी सारी शिकायतें भी दूर हो जाने वाली हैं। तो लीजिए, समाप्त कीजिए।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरीले गाते में सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे। और अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सी गज़ल सुनी, मुझे उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा और आप एक अजीब सी खूबसूरत कैफियत में खो गए होंगे। दोस्तों, ये गज़ल जो है मोइन नज़र की थी, कनल मोइन नज़र साहब का ये कलाम था जिसे गाया था प्रद्युम्न शर्मा ने और मौसीकी भी उन्होंने ही दी थी। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मोहब्बत और शिकायत के बारे में और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगर हम बताएं तो हर उम्र और रिश्ते की शिकायतें भी अलग अलग होती हैं। नई नई मोहब्बत में शिकायतें भी बड़ी मासूम होती हैं, जैसे आपने मुझे देखा क्यों नहीं। फिर रिश्ता पुराना होता है तो शिकायतों का अंदाज़ भी बदल जाता है, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि शिकायत रिश्तों के बीच दूरी का सबब न बने बल्कि एक दूसरे को समझने का ज़रिया बने। शिकायत में नाराज़गी हो सकती है मगर दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जॉन एलिया ने कहा है, कौन इस घर की देखभाल करे, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। तो हम रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करें, तोड़ने की नहीं। हम से हमारी ज़ात से ये रिश्ते हैं तो इन रिश्तों का एहतराम भी ज़रूरी है। तो इसी खूबसूरत ख्याल के साथ सुनिए ये नगमा।

दोस्तों, इसी गीत के साथ पुराने फिल्मी गीतों का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। अब पेश है पयाम शब, तहरीर व पेशकश है जनाब जैदी साहब की। लीजिए, समाप्त कीजिए।

कोई बात काबो ख्याल की जो करो तो वक्त कटेगा अब, हमें मौसमों के मिजाज पर कोई एतबार कहाँ रहा। जिंदगी में हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, कभी कभी खुशी, कभी गम, कभी बहार, कभी खजां आती है। इसीलिए अपनी उम्मीदों, मंसूबों और खुशियों को सिर्फ हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ना चाहिए। बदलते मौसमों से ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान अपने हौसले, ईमान और मुस्बित सोच को कायम रखे। अगर हालात साजगार ना हो तो अच्छी बातें, नेक ख्यालात और रोशन उम्मीदें दिल को संभाले रखती हैं। दुनिया के हालात और मौसम हमेशा बदलते रहते हैं, इसीलिए इन पर मुकम्मल भरोसा न करें। मुश्किल वक्त में अच्छी सोच और उम्मीद इंसान का सबसे बड़ा सहारा है। मायूसी के बजाय सब्र और तवक्कल को अपना शार बनाएं। वक्त की सख्तियां भी गुजर जाती हैं, इसीलिए उम्मीद का दामन कभी न छोड़ें। जो इंसान बदलते मौसमों के बजाय अपने किरदार, सब्र और अल्लाह पर भरोसा करता है, वो हर हाल में अपनी जिंदगी को खुशगवार बना लेता है।

दोस्तों, इसी खूबसूरत पैगाम के साथ नए रंग इख्तिताम पज़ीर होता है। अगली बज़्म में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अभिनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित यह प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जनविश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। यह निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और HPV संक्रमण और HPV से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में

0: एक बड़ा कदम है।
1: भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तेज

महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: have, you know, because of this, those conflicts, there is a supply chain disruption, there are energy prices surging. So given all the circumstances, the figures that are coming out, especially of the BRICS bloc, they're very encouraging and very important.
1: Well, definitely these figures are very important and highlight the importance of the BRIC nations. And mind you, within the BRICS nation, there's a pack called emerging economies. These are also right. called emerging economies. The entire concept of BRICS mm-hmm. emerged from the importance of the emerging economies. Yes. And in today's global economic environment, emerging economies or the EMs pack is very important. And these figures, as highlighted by the Prime Minister, underscore the importance. And mind you, whereas we are 50% of the population, mm. our GDP contribution is, I'm talking about the BRICS nation, mm. is 40%. Yes. That means we need to further pace up. Obviously, we have grown faster than the rest of the world. Again, I'm talking about the BRICS nation. But we need to continue with this acceleration so that at least if there's a population of 50%, there's a scope,
0: yes.
1: tremendous scope to further pace up.
2: क्योंकि प्रकाश जी जैसा प्रधानमंत्री ने खुद ही जो हाईलाइट किया है अपने भाषण में कि दुनिया की 50% आबादी यहाँ रहती है जैसा आप ये भी बता रहे थे और जीडीपी 40% है तो अभी सचमुच इस दिशा में बहुत कुछ करने की जरूरत तो है लेकिन अर्थव्यवस्था और अगर हम देखें पूरी आर्थिकी पर गौर करें तो जो ब्रिक्स के देश हैं वो पूरी दुनिया में जो ब्रिक्स के बाहर के देश हैं उनके मुकाबले किन क्षेत्रों में अपनी पकड़ और मजबूत कर सकते हैं
1: देखिए एक तो जैसे स्कोप बहुत ज्यादा है अब आप इन्हीं फिगर्स में जो प्रधानमंत्री जी ने दी है उसमें एक फिगर है इंटरनेशनल ट्रेड का 25% तो यहाँ तो बहुत स्कोप है प्रधानमंत्री जी और हमारे विदेश मंत्री जी और हमारे यहाँ पे एक फोकस पॉइंट ये भी है कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं अभी भी संसार में जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको हटाने की जरूरत है इसलिए भी जरूरत है ताकि हम अपना ट्रेड और बढ़ा पाए हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं एमर्जिंग इकोनॉमीज के ब्रिक्स नेशंस के जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाते हैं तो उनको किसी तरह की नॉन टैरिफ बैरियर नहीं होना चाहिए एक जो अब देखिए एक माहौल सा बना हुआ है जहाँ टैरिफ जो है टैरिफ का वेपनाइजेशन होता है तो ये सब चीजें जो है ये ठीक नहीं है और ये बिल्कुल सही एम्फेसाइज किया जा रहा है कि ब्रिक्स नेशंस ने बहुत अच्छा काम किया है इकोनॉमीज में बट स्केल अप तो करना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है कि ये जो है दौर चलता रहेगा डिस्पाइट द चैलेंजेस बिकॉज रेजिलियंस की बात भी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं
0: The International Monetary Fund, IMF, has described India as a key engine of global growth after the country's economy expanded 7.8% in the first quarter of current fiscal. The stronger than expected performance was driven by services and exports, even as the economy faced an energy price shock, said Julie Kojak, director of the IMF's communications department. So yet another, you know, validation coming in this time from the IMF that, you know, the economy has grown despite all the factors that talked about earlier that despite all the factors that are happening right now the things that are happening right now India's economy is still expanding you know expanded by 7.8% and as the IMF you know official said that basically driven by services and exports how do you see that
1: well it shows it underlines the resilience that the Indian economy showed up when it comes to dealing with the global headwinds hmm. and you have sometime global headwinds converting into global storm like what happened yesterday hmm. the tension in the Middle East escalated hmm. and challenging the energy security so under these circumstances if you are able to grow at a pace at which we are growing this definitely shows the resilience inherent resilience of our economy.
0: And before we move forward, let's listen into what the Prime Minister said during the Business Forum meeting today.
3: Economic strength duniya ki tulna mein kareeb 2 guni raftaar se badi hai. BRICS desh global innovation aur solutions ke liye mahatvapurn centers mein ban rahe hain. Grassroots se lekar frontier technologies tak हमारे देशों में इनोवेशन की नई

आए, आकार ले रही है। तो इसकी बढ़ती स्केल, स्पीड और ऑप्टिमिज्म हमारे बीच साफ दिखाई दे रही है। भारत में आयोजित यह

0: देशों ने टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं सहित एक तरफा व्यापार और वित्तीय उपाय लागू किए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। सदस्य देशों ने कहा कि इससे व्यापार प्रभावित होता है और यह विश्व व्यापार संगठन WTO के नियमों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने WTO को केंद्र में रखते हुए स्वतंत्र, पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति समर्थन दोहराया। भारत की अध्यक्षता में मुंबई में कल ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में यह बात कही गई। मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों ने कहा कि भू राजनीतिक तनाव, व्यापार में बिखराव, संरक्षणवाद, नीतिगत अनिश्चितता, राजकोषीय और मुद्रास्फीति संबंधी दबाव, बढ़ते कर्ज और वित्तीय जोखिमों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां बनी हुई हैं। प्रकाश जी, हम वित्त मंत्रियों की बात भी हमने सुनी जो कल बात हुई है, और सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स ने भी कहा है, और सबने वही जो आप पहले कह रहे थे, बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था होनी चाहिए। आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे?
1: नहीं, बहुत सही बात है। बहुत बड़ी चिंता है कि जो मल्टीलेटरलिज्म है उसको एक खतरा हो रखा है आजकल में, जब टैरिफ को हमने एक तरह वेपन बना दिया है काफी मुल्कों ने, और खासतौर पे खास एक देश ने अपना वेपन बना लिया है। और वो वेपनाइजेशन जो टैरिफ को आप करते हैं तो पूरे संसार में उसका असर पड़ता है, और मल्टीलेटरलिज्म के फ्यूचर पे भी सवाल खड़ा होता है। इसलिए ये जो चिंता जाहिर की गई है ये बड़ी ही वाजिब चिंता है, इसको एड्रेस करने की जरूरत है
0: जी। और चलिए अब नजर डालते हैं हम अब आज शेयर बाजारों का क्या हाल रहा। देश के शेयर बाजारों के प्रमुख सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 121 अंक गिरकर 74,782 पर बंद हुआ। निफ्टी 80 अंक नीचे 23,398 पर आ गया। एनएसई का मिड कैप 100 0.3% गिरा, जबकि स्मॉल कैप 100 में 0.6% की गिरावट आई। आज कारोबार की शुरुआत में सूचकांक काफी गिरावट के साथ खुले थे। कच्चे तेल की तेज कीमतों और निवेशकों की सावधानी का असर बाजार पर दिखाई दिया। आखिरी घंटे में सूचकांक अपने निचले स्तर से थोड़ा ऊपर तो आए, लेकिन नुकसान में ही बंद हुए।
2: Benchmark domestic equity indices ended in negative territory today. The Sensex fell 121 points to close at 74,782. The Nifty dropped 80 points to settle at 23,398. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 index declined 0.3% and the Small-Cap 100 index dipped 0.6%. Earlier, the markets opened with a gap down and traded with losses, weighed down by elevated crude oil prices and cautious investor sentiment. However, the indices spared initial losses during the final hour, supported by value buying and decline in oil prices.
0: और सेंसेक्स में शामिल 30 में से 19 कंपनियों के शेयर आज नुकसान में रहे। सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयरों पर नजर डालें, टाटा स्टील में 1.7%, रिलायंस में 1.3% और सन फार्मा में 1.2% की गिरावट रही। सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों में HDFC बैंक में 2%, टेक महिंद्रा में 1.4% और HCL टेक में 0.8% से अधिक की बढ़त देखी गई।
2: In the sectoral indices on the BSE, 20 out of 28 sectors edged downward. Among the underperformers, realty lost 2.7%, metal dropped 2.4% and commodities fell 1.6%. In contrast, telecommunication advanced 1%, private banks gained 0.5% and IT added 0.3%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,471 companies declined, shares of 1,854 companies advanced, while shares of 234 companies remained unchanged.
0: जी प्रकाश जी, बाजार का हाल हमने बता दिया। शुरू में आज काफी गिरावट थी, थोड़ा बीच में लगभग फ्लैट होने की हालत तक फिर बढ़ा था, लेकिन अंत में फिर 121 अंक सेंसेक्स गिरा है और निफ्टी भी 80 अंक नीचे आ गया है। इसको देखें और इसके साथ पूरे पूंजी बाजार को अगर हम देखें, आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से बॉन्ड मार्केट की क्या हालत है पूरी दुनिया में, और जिस तरह से जो पैसे का मूवमेंट है किन बाजारों से निकल रहा है और कहां जा रहा है, जापान अपने पैसे वापस ले रहा है, क्या इन सब का एक सस्टेन्ड असर अब दुनिया के बाजारों पर दिखाई देना शुरू होगा?
1: नहीं, पूरी पूरे बाजार में पहले आज की बात करते हैं
0: जी। आज
1: आज सुबह तो बुरा हाल था
0: जी,
1: फिर रिकवरी

0: बड़ी अच्छी रिकवरी आई। अब रिकवरी जो आई वो इस तरह से नहीं आई कि जैसे संकट दूर हो गया। रिकवरी इसको ट्रेड पार्लर्स में, टेक्निकल ट्रेड्स में शॉर्ट कवरिंग हुई। लोग जब पैनिक हुआ सुबह तो ट्रेडर्स ने शॉर्ट सेलिंग काफ़ी धड़ल्ले से की। जब धड़ल्ले से शॉर्ट सेलिंग हुई तो शॉर्ट सेलिंग के अपने रिस्क होते हैं, उसको कवर करने की कोशिश की गई, इसलिए स्मार्ट रिकवरी आई। और ये एक ट्रेड काइंड ऑफ है वो है, लेकिन इससे ये नहीं कि दुनिया की चिंता दूर हो गई।
1: ये दैनिक, ये तो आज का था,
0: आज का था। अब हम बात करते हैं कि ये कारण क्या है, कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण जो लेटेस्ट था कि जो मिडिल ईस्ट में जो उथल पुथल है और बदतर हो गई। पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दिक्कत थी, अब रेड सी में दिक्कत हो रही। तब दोनों चैनल आपके ट्रेड बंद हो जाएगा, शिपिंग रूट्स बंद आएंगे, और जाहिर बात है उसका असर हमको तेल की मार्केट में मिला। क्रूड ऑयल जो 110 तक पहुंचा, फिर वापस रिकवरी हुई, तो ये उतनी उथल पुथल में मार्केट का इन्वेस्टर नर्वस हो जाता है। तो अब आपने कहा कि कारण क्या है, एक कारण तो मिडल ईस्ट है, दूसरा कारण आपने कहा बॉन्ड यील्ड का। अब बॉन्ड यील्ड जो है एक अपने आप में जेम्स बॉन्ड बन गया है, तो वो एक अपने आप में एक खतरा है। वो क्या दर्शाता है बॉन्ड यील्ड्स का, मतलब आम आदमी की भाषा में बोला जाए ये दर्शाता है बॉन्ड यील्ड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, अमेरिका में तो काफी ज्यादा तेजी है, ये दर्शाता है आम भाषा में कि इन्फ्लेशन का जो डर है लार्जली अराइजिंग आउट ऑफ द मिडल ईस्ट प्रॉब्लम एंड और बाकी चीज़ों से, इन्फ्लेशन का जो खतरा है बड़ा मंडरा रहा है पूरे वर्ल्ड पे, और उसके कारण मिडल ईस्ट भी है, उसका कारण पूरे जो संसार में खासतौर पे अमेरिका में जो उनका डेट है, उनका उधार है $40 trillion, वो अनसस्टेनेबल कोशिश की जा रही है। वहां के जो फाइनेंस मंत्री हैं, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से मैं इसकी फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग कर पाऊंगा, लेकिन री इंजीनियरिंग जो है वो एक बैंडेड होती है, उससे काम नहीं चलता
2: जी।
1: लेकिन क्या आने वाले समय में हम पूंजी बाजार में एक रीबैलेंसिंग देखेंगे?
0: रीबैलेंसिंग का मतलब

0: 9% से ज्यादा गिरा।
1: लेट्स मूव ऑन टू कमोडिटीज। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस फेल
0: से पहले मुझे लगता है क्रूड के संबंध में अभी और भी काफी कुछ खबरें हैं अनुभव जो प्रकाश जी से हमें चर्चा करनी चाहिए कि अभी जैसा कह रहे थे हम पूरी दुनिया के बाजारों पर असर डालने वाला एक सबसे बड़ा कारक यह है कि सप्लाई हमारे क्रूड की सप्लाई कैसे होगी, कहां से होगी, रास्ते बंद होते जा रहे हैं। और आईईए ने जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें यह भी है कि कच्चे तेल की वैश्विक आपूर्ति में रोजाना 57 लाख बैरल की गिरावट आने की आशंका है। मतलब इससे फिर अब डेली जो सप्लाई है वो 10.7 करोड़ बैरल प्रतिदिन हो जाएगा वो डेली सप्लाई।
2: आईईए ने तो एक अपनी रिपोर्ट जारी किया, नंबर दिया है, बट ये जो आशंका है ये कोई इसलिए कोई अंग्रेजी बोलते हैं नो ब्रेनर
1: जी,
2: तो नो ब्रेनर है जब
0: है ही, दिखाई दे ही रहा है
2: तो वो उन्होंने एक नंबर देके आपको स्टैंप लगा दिया, तो वो तो एक है, गिवन है। तो अब उसमें इसके फिर सवाल ये है कि ये सिचुएशन ऐसी थी कि वार जो है जब अब 6 महीने से ज्यादा हो गए वार को मिडल ईस्ट में, उधर से यूक्रेन रशिया को जो है उसमें भी ग्लोबल सप्लाई चेन इम्पैक्ट हो रही है, तो ऐसी शंका जताई जा रही है और ऐसा डर है और ऐसा वो है कि भाई आर्मी ने सिचुएशन कि भाई जहां पे अंग्रेजी बोलते हैं फॉरएवर वॉर
1: जी,
2: जब ऐसी सिचुएशन में तो मुल्कों को अपने अपने देशों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से प्रिपेयर्डनेस की जाए, स्ट्रेटजिक रिजर्व्स बनाए जाएं, क्लीन फ्यूल की तरफ हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ के लिए आ जाए, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट।
0: इसके साथ साथ ये अनुमान भी है कि इस साल वैश्विक तेल की मांग में 25 लाख बैरल प्रतिदिन की गिरावट भी आएगी, जो कि पहले के 16 लाख बैरल प्रतिदिन की गिरावट के पूर्वानुमान से थोड़ी ज्यादा है। तो अब दोनों श्रिंक होने की बात हो रही कि शायद मांग में भी गिरावट अब
2: उसका मुझे अंदेशा है क्योंकि डिमांड, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई रिसेशन आ रहा है, उसका मुझे थोड़ा अंदेशा
1: जी। एंड लेट्स गेट बैक टू द कमोडिटी प्राइसेस। लाइक आई वाज सेइंग अर्लियर, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस फेल टुडे। ब्रेंट क्रूड वाज ट्रेडिंग 3.2% डाउन एट $104.15 पर बैरल इन इंट्राडे ट्रेड एट द टाइम ऑफ राइटिंग दिस रिपोर्ट। वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट क्रूड वाज ट्रेडिंग 3.2% डाउन एट $99.17 पर बैरल।
0: और भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.9% गिरकर 1,51,938 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी 2% की गिरावट के साथ 2,28,920 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। आज अनुभव वक्त इतना ही है, खबरें तो और भी बहुत कुछ हैं, लेकिन अब चलते हैं प्रकाश जी कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: एंड बिफोर वी क्लोज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेसेस लीडर्स सेशन ऑफ ब्रिक्स बिजनेस फोरम, सेज ब्रिक्स नेशंस आर इमर्जिंग एज की हब्स फॉर ग्लोबल इनोवेशन एंड सॉल्यूशंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स 121 प�points, निफ्टी सेटल्स बिलो 23,400, and global oil supply and demand to further contract this year, says International Energy Agency. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye, namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। गीत मेरे मन मीत को प्यारे साजों से सजाकर आज प्रोग्राम में साथ हूँ मैं रोहिणी। दिल के ख्यालात से दूरियों को बयां करने के अल्फाज तो निराले हैं, लेकिन कहते हैं दूरियों का गम नहीं अगर फासले दिल में ना हो, और नज़दीकियाँ बेकार हैं अगर जगह दिल में ना हो। ये अनुभव गीत के अंदाज से भी आइए आप तक पहुंचाते हैं। आनंद लीजिए इस प्यारे से गीत का, जो कि दुनिया फिल्म से है, और इस गीत को आवाज़ दी है किशोर जी और आशा जी ने। इस गीत को अल्फाज दिए हसरत जयपुरी साहब ने और संगीत से सजाया शंकर जयकिशन जी ने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा अंदाज 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

जी दोस्तों, इन दूरियों में, नज़दीकियों में कभी कभी आप सोचते हैं कि बस खामोशी ही सब कुछ बयां कर जाए। हमारी चुप्पी को कमजोरी मत समझना, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है दोस्त। जब बोलते हैं तो असर होता है और जब चुप रहते हैं तो भी बात होती है। अगला गीत आप सुन रहे हैं फासले फिल्म से लता जी की और किशोर जी की आवाज़ में। इस गीत को अल्फाज दिए हैं शहरयार ने और संगीतबद्ध किया है शिव हरी जी ने।

सौदश मलविक मेगा हर्ट्स पर गीत मेरे मन मीत का ये दिलकश अंदाज आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ रोहिणी। और जी हाँ, समय जो है वो हमें इशारा कर रहा है कि आज के गीत मेरे मन मीत को यहीं समेटने की आपसे लूँ इजाज़त। और वो कहते हैं ना, बड़े प्यारे अल्फाज हैं, शबे इंतज़ार आखिर कभी होगी मुख्तसर भी, ये चिराग बुझ रहे हैं मेरे साथ जलते जलते। जी हाँ श्रोताओं, तो फिलहाल आपसे गुजारिश यही करते हैं कि सुनते रहिए, बने रहिए आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। ये आज के गीत मेरे मन मीत का आखिरी गीत मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो कि है अराउंड द वर्ल्ड फिल्म से। इस गीत को गुनगुनाया है मुकेश साहब ने और अल्फाज दिए हैं हसरत जयपुरी साहब ने, और अपने संगीत के प्यारे अंदाज से सजाया है शंकर जयकिशन जी ने। तो आइए श्रोताओं, फिलहाल मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त शुभ रात्रि के साथ, और इस आशा के साथ कि आप जीवन के सफर में यूं ही आगे बढ़ते रहें, हंसते मुस्कुराते और जिंदगी के रंगों में अपने अनुभव को लेते हुए। फिलहाल सुनते हैं ये गीत 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये प्यारा अंदाज़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित यह प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरेश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के लिए महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल

0: इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
0: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तमिल भाषा की शास्त्रीय और कालजयी ज्ञान कृति तिरुकुलर का रूसी अनुवाद सौंपे जाने की सराहना की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जनविश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही, बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोलिक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। उधर भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम आज सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में आज कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। निशिगंधा लेकर माधुरी है आज आप सभी के साथ। नमस्कार। इस उम्मीद पे रोज चराग जलाते हैं, इस उम्मीद पे रोज चराग जलाते हैं, आने वाले बरसों बाद भी आते हैं।

बाहू बेगम फिल्म से ये गीत सुन रहे थे आप मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। इंतज़ार कह लीजिए, बाट जोहना कह लीजिए, राह देखना, आस लगाना, उम्मीद रखना या फिर किसी का आसरा देखना कह लीजिए, किसी भी तरह से इस इंतज़ार को आप बयां कर सकते हैं। और आज निशिगंधा में हम इसी इंतज़ार को लेकर आए हैं। इंतज़ार सिर्फ वक्त का गुजर जाना नहीं है, ये वक्त को महसूस करना है। घड़ी की सुई रोज चलती है, पर जब हम किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं ना,

तब हर सेकंड और लंबा हो जाता है। इंतजार में एक अजीब कशिश है, एक सुकून भी है, एक अजीब सा दर्द भी है।

खामोशी फिल्म से ये गीत सुन रहे थे आप हेमंत कुमार के आवाज़ में। बात इंतज़ार की। इंतज़ार के भी अलग अलग रूप हैं, प्रकार हैं। बचपन में जब शाम होती तो बच्चे को इंतज़ार रहता है ऑफिस से लौट रहे उसके पिता का, और समय बदला, माँ भी ऑफिस जाने लगी और माँ का भी उसी तरह इंतज़ार होने लगा, और साथ साथ उन मज़े मज़े की चीज़ों का इंतज़ार जो माता पिता लाने वाले होते हैं। लेकिन वही इंतज़ार जवानी की दहलीज पर अलग रंग ले लेता है। इंतज़ार हो जाता है महबूब की एक झलक का, उसके भेजने वाले संदेशों का इंतज़ार। इसी तरह हर उम्र में, हर दौर में, हर चीज़ का अलग एक इंतज़ार होता है, और हम किसका रास्ता देख रहे हैं।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे गीत फिल्म डॉन से लता जी और किशोर कुमार की आवाजों में। आज निशिगंधा में हमने जिस टॉपिक को लिया है वो है इंतज़ार। हम सभी को किसी ना किसी का इंतज़ार होता है, किसी के काम बनने का इंतज़ार होता है, कहीं जाने का इंतज़ार होता है, कुछ पाने का इंतज़ार होता है। किसान को बारिश का इंतज़ार होता है, छत पर गीले कपड़ों को धूप का इंतज़ार होता है, कोई गाँव लौटने के इंतज़ार में है, किसी को परीक्षा के बाद परिणाम का इंतजार है, पकी फसलों को कटाई का इंतजार है, सब अपने अपने उम्मीद के इंतजार में होते हैं। अभी आपको भी इंतजार है अगले गीत का, हमें मालूम है, तो चलिए शुरू करते हैं अगला गीत।

इंतज़ार पर ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपने सुना फिल्म शराबी से, आशा जी और किशोर कुमार की आवाज़ों में। इंतज़ार करना आसान नहीं है, ये सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान है। इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, बस उम्मीद को जकड़ कर पकड़ कर बैठे रहते हैं। इसीलिए ये बेचैन भी करता है हमें, रात भर नींद नहीं आती, बार बार दरवाजे की तरफ देखा जाता है, फोन चेक किया जाता है, लेकिन इसी बेचैनी में दिल जिंदा रहता है। जिसका इंतज़ार ख़त्म हो जाए उसकी कहानी भी शायद ख़त्म हो जाती है, और आँखों में इंतज़ार ही हमें दूर तक देखते रहने को मजबूर करती है, आशावान रखती है हमें।

इंतज़ार दर्द तो देता है, तकलीफ तो देता है, पर हमें बेहतर भी बनाता है। कैसे? ऐसे कि जो इंतज़ार करना जानता है वो सब्र करना जानता है, वही रिश्ते निभाना भी जानता है। उसे रिश्तों की कद्र आती है, वो रिश्तों की कद्र करना समझता है और जानता है। जो चीज़ इंतज़ार के बाद मिलती है उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। और एक बहुत ही खूबसूरत सा शेर है इस पर कि ये इंतज़ार की घड़ियाँ, ये शब का सन्नाटा, इस एक शब में भरे हैं हज़ार साल के दिन।

ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे फिल्म विजयपथ से, आवाजें साधना सरगम और साथियों की। आज का दौर जो है वो कुछ अलग है, सब कुछ हमें जल्दी चाहिए, इंस्टेंट चाहिए। इंस्टेंट मैसेजेस हम भेजते हैं, इंस्टेंट हमें डिलीवरीज चाहिए, इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, सब कुछ जल्दी जल्दी पाना चाहते हैं हम। और इस जल्दबाजी ने हमसे इंतज़ार का सुकून छीन लिया है। अगर आप आज का इंतज़ार कर रहे हैं या आप किसी का भी इंतज़ार कर रहे हैं तो घबराइए मत, ये वक्त जो है ना खाली नहीं जा रहा है। ये वक्त आपको सिखा रहा है, आपको तैयार कर रहा है, क्योंकि इंतज़ार का फल हमेशा मीठा ही नहीं होता, गहरा भी होता है।

0: 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का आरंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद मजबूत बनाना विषय पर सत्र से होगा। प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर आज सुबह 9:30 से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवागमन लागू रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपनी यात्रा की योजना पहले निर्धारित करने और अतिरिक्त समय रखने की सलाह दी है। पुलिस ने लोगों को यथासंभव सार्वजनिक परिवहन, खासकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह भी दी है। सरकार ने शहरी क्षेत्रों में सभी को आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य में तेजी लाने और योजना क्रियान्वयन को गति देने के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना द्वितीय चरण के तहत कुल 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्यालय मंत्री की केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की 9वीं बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर।

0: इसी के साथ निशिगंधा का ये सफर यहीं समाप्त होता है। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना हूं।

ये है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने लेकर माधुरी है आप सभी के साथ। एक बार फिर नमस्कार, और चलिए शुरू करते हैं इस सफर को जिसमें हम सुनते हैं सुहाने पुराने गीतों को।

मोहम्मद रफ़ी और आशा जी की आवाज़ में ये गीत आप तक पहुंचा फिल्म मेरे सनम से, ओपी नैयर का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी की बोल। और जब भी प्यार की बात होती है तो बड़ी खूबसूरत बात होती है। किसी से प्रेम हो जाए तो उसे पाने की जिद मत करना, बस उसके होने से तुम्हारे भीतर जो खुशी खिली है उसे उसी तरह खिलने देना।

नैना फिल्म से गीत सुन रहे थे आप, आवाज मोहम्मद रफी साहब की और संगीत शंकर जयकिशन का। बात हो रही थी प्रेम की। किसी से प्रेम हो जाए तो उसे पाने की जिद मत करना, बस उसके होने से तुम्हारे भीतर जो खुशी खिली है उसे उसी तरह खिलने देना, क्योंकि हर प्रेम का मुकाम मिलन नहीं होता। कुछ प्रेम केवल इसलिए आते हैं कि वे हमारे भीतर की कठोरता को पिघलाकर हमें थोड़ा और सुंदर बना सकें। इसलिए अगर कोई तुम्हारे जीवन में प्रेम का एहसास छोड़ जाए तो उसे पाने की नहीं, उस एहसास के लिए धन्यवाद देना उसका कि उसने आपको ये कला दी। क्योंकि कुछ लोग हमारे होकर नहीं, हमें प्रेम करना सिखाकर हमारी आत्मा का हिस्सा बन जाते हैं।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म आपकी परछाइयाँ से, मदन मोहन का संगीत। और बात आगे क्या बढ़ाएं, कुछ तो ख़ास होता होगा ना कुछ लोगों में कि उनसे बात किए करसा बीत जाता है, मगर हमारी खामोशियों में आज भी वही सुनाई देते हैं। होता है ना ऐसा आपके साथ भी?

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और प्यारे प्यारे गीत यहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए गीत सुहाने के इस सफर में। एक बड़ी ही अच्छी हम बात कर रहे थे कि कुछ खास ही होता है कुछ लोगों में कि अरसा भी बीत जाए तो जो उनके खामोशियाँ होती हैं वो हमें सुनाई देती हैं, ना कोई संदेश, ना कोई मुलाकात, ना कोई खबर उनकी, फिर भी न जाने कैसे हर बात के पीछे उनका जिक्र आ ही जाता है। शायद कुछ लोग हमारे ज़िंदगी में रहने के लिए नहीं, हमारे भीतर बस जाने के लिए आते हैं। और सच में ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं कि न चाहते हुए और चाहते हुए भी हम उनकी बातें करते हैं।

भाई इतना सोने की जिद पकड़ के इस गीत में बैठ गए हैं कि सचमुच मुझे भी यहाँ बैठे बैठे अब नींद आ रही है. लेकिन जो इन गीतों की मधुरता है ना, ये सोने भी कहाँ दे रही है. ये गीत सुन रहे थे आप येसुदास की आवाज़ में फिल्म आलाप से. क्या हुआ है कि तुम उदास हो, क्या हुआ है कि तुम उदास हो, क्या फिर तुम्हें सुना नहीं गया, क्या टूट गया है कुछ अंदर तक, क्या पिघल रहा है तुम्हारे अंदर कुछ. ये भय है, पश्चाताप है या सूनापन है, क्या हुआ है कि तुम उदास हो.

फिल्म साथी से ये गीत सुन रहे थे आप मुकेश की आवाज में नौशाद के संगीत के साथ। वक्त का काम ही है आगे बढ़ते रहना और हमें वक्त के साथ चलना है। संसार कहता है प्रेम पागल कर देता है, किंतु तुम्हारे प्रेम ने मुझे समझदार कर दिया। अब मैं तुम्हें खोजने नहीं निकलता किसी गली, किसी पते, किसी शहर में, क्योंकि समझ गया हूं जिसे दिल में बसाया हो उसे रास्तों पर ढूंढना व्यर्थ है।

लता जी की आवाज में अनुपमा फिल्म से गीत सुन रहे थे आप। सच ही कहा है कि जिसे दिल में बसाया हो उसे रास्तों पर ढूंढना व्यर्थ है। अब मैं बाहर नहीं अपने भीतर उतरता हूं, अपने मन के तहों को टटोलता हूं, जहां तुम्हारी याद अब भी किसी शांत दीपक की तरह जलती है। तुम मिले या नहीं ये प्रश्न अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। तुम्हारे प्रेम ने मुझे इतना तो सिखा दिया कि किसी को पाने से बड़ा है उसके प्रेम में स्वयं को पा लेना।

लता जी की आवाज में ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म बहारों के सपने से, और गीत सुहाने का ये सफर अब बस अपने अंतिम पड़ाव पर है। ये आखिरी गीत गीत सुहाने से आप सभी के लिए फिल्म झील के उस पार से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामपोजा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति

0: प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का आरंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद मजबूत बनाना विषय पर सत्र से होगा। प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर आज सुबह 9:30 से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों में यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवागमन लागू रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपनी यात्रा योजना पहले से निर्धारित करने और अतिरिक्त समय रखने की सलाह दी है। यूरोपीय आयोग ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर और इसे लागू करने के लिए यूरोपीय परिषद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किया। इस समझौते को अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताया जा रहा है। यूरोपीय परिषद की मंजूरी मिलने पर भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में आज कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब ये जो सफर है ये है रात सुरमई, जिसे लेकर आज की रात मैं माधुरी हूँ आप सभी के साथ। नमस्कार।
1: आपके शहर में आकर एक खास गाना बनाया है जो इस प्रोग्राम को रोककर आपके सामने पेश करता है।

हर कदम जिंदगी ने आजमाया मुझे, तन्हाइयों ने हर मोड़ पर बुलाया मुझे, मंजिल के तलाश में निकला था एक राही, न जाने किस सफर ने अपना बनाया मुझे।

याद दिला दें आपको कि आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 MHz पर। रात्रि के 2:33 और हो गए हैं पूरे 53 सेकेंड। ये सफर है रात सुरमई का, जिसमें आज मैं हूं मैं माधुरी आप सभी के साथ। बात करते हैं ख्याल की। ख्याल जिसका था मुझे, ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे।

ख्वाब से निकलकर अब चलते हैं एक लंबे सफर पर। पलट आता हूं मैं मायूस होकर उन मकामों से जहां से सिलसिला नजदीक तर होता है मंजिल का। और इस सफर में और आगे तक हमें जाना है। और सफर की बात जब होती है तो मंजिल भी दिखती है। कई बार हम ऐसे सफर पर भी चल पड़ते हैं जहां मंजिल बहुत दूर होती है। मुसाफिर तेरा जिक्र करते रहे, महकता रहा रास्ता देर तलक।

बिल्कुल, मुसाफिर को घर ही आना है और बहुत दूर चलते चलते थक गए हैं और हमें भी अब घर जाना है। तो रात सुरमई का ये आखिरी नगमा आप सभी के लिए, इसके साथ ही इजाजत दीजिए माधुरी को।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का आरंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद मजबूत बनाना विषय पर सत्र से होगा। प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति

0: व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्यों देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर आज सुबह 9:30 से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवागमन लागू रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपनी यात्रा की योजना पहले निर्धारित करने और अतिरिक्त समय रखने की सलाह दी है। कांगो के पूर्वी हिस्से में आरंभ हुआ जानलेवा संक्रामक रोग इबोला अब इस अफ्रीकी देश के 7 प्रांतों में फैल गया है। यह इस बीमारी का अब तक विश्व में सबसे तेजी से बढ़ता प्रकोप है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल इक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। उधर भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम आज सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधर दिल्ली में आज कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin reviewed the progress in bilateral cooperation in political, economic, defense, energy, space, skill mobility, and people-to-people domains yesterday. During their bilateral talks in New Delhi, the two leaders also shared perspectives on key regional and global issues of mutual interest, including the conflicts in West Asia and the Black Sea region. Prime Minister Modi reiterated that dialogue and diplomacy is the way forward in resolving conflicts, and India stood ready to assist in peace efforts. The External Affairs Ministry said in a statement that Prime Minister Modi and President Putin welcomed Russia's International Industrial Exhibition InnoProm India. President Putin invited Prime Minister to visit Russia for the 24th India-Russia Annual Summit. Prime Minister accepted the invitation. Mr. Modi gifted Mr. Putin a Russian translation of the Thirukkural, the ancient Tamil classic by poet-philosopher Thiruvalluvar, during their meeting.

हमारे दोस्तों ने ट्यून किया है एफएम गोल्ड चैनल, और इस चैनल पर मैं हूँ आपकी दोस्त वंदना चुग। हमराही कार्यक्रम के अंतर्गत गीतों के साथ स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों, नज़र किसी की खफा नहीं होनी चाहिए, और अगर खफा हो भी जाए तो मनाने वाला कोई अपना ही होना चाहिए। दो कलियां फिल्म से अभी आपने गीत सुना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत साहिल लुधियानवी का था और संगीत रवि का। अगला गीत आप सुनेंगे चोर मचाए शोर फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में, इंद्रजीत सिंह।

दोस्तों, अगला गीत कह रहा है कि प्यार करने वाला अगर दिल पर नाम लिख रहा है तो उसने लिखने देना चाहिए।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत था आराधना फिल्म से। आनंद बख्शी के बोल थे और सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: दोस्तों, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही और गीतों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त वंदना चौक।

अपना देश फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा था और आर डी बर्मन की बनाई हुई धुन थी। अगला गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ इश्क पर जोर नहीं फिल्म से। आनंद बख्शी का गीत है और सचिन देव बर्मन का संगीत।

और अब अगला गीत आप सुनेंगे आदमी और इंसान फिल्म से, आशा भोसले और मोहम्मद महेंद्र कपूर की आवाज़ में। साहिल लुधियानवी की रचना है और रवि की बनाई धुन।

0: क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: दादा,
0: सुनो तो मोना, सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: Busgerei. Pelle Senna auf Busgerei.
1: Pelle Senna auf Busgerei. Kal, aaj aur kal. Ye geet abhi aapne suna. आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में नीरज का लिखा गीत था और शंकर जयकिशन का संगीत. अगला गीत आप सुनेंगे दीवार फिल्म से. किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज है. साहिल लुधियानवी ने गीत की रचना की है और आरटी बर्मन के बनाई हुई धुन.
2: ना
3: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है
3: कह

दोस्तों, अब अगला पड़ाव आ गया है, यानी हमरा ही कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव। खेल खेल में फिल्म से गीत आप सुन रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में, गुलशन बावरा की रचना और डी बर्मन का संगीत।

0: रहे हैं।
1: तो देखने दो,
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो,
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हो जाए
1: हो जाए।

0: और इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम हमरा ही अब संपन्न होता है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का आरंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद मजबूत बनाना विषय पर सत्र से होगा। प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र

0: रास्ता है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नागरिकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर आज सुबह 9:30 से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवागमन लागू रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपनी यात्रा की योजना पहले निर्धारित करने और अतिरिक्त समय रखने की सलाह दी है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि उसने देश की एक प्रमुख तेल पाइपलाइन एहतियातन बंद कर दी है। यह पाइपलाइन ऐसे समय बंद की गई है जब यमन में हौसी विद्रोहियों ने बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य के पास तटीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इससे इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग के जरिए सऊदी अरब के तेल निर्यात पर खतरा उत्पन्न हो गया है। महिला एशिया कप क्रिकेट में कल दुबई में भारतीय टीम फाइनल में पिछले चैंपियन श्रीलंका से भिड़ेगी। श्रीलंका की टीम पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में आज कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin reviewed the progress in bilateral cooperation in political, economic, defense, energy, space, skill mobility and people-to-people domains yesterday. During their bilateral talks in New Delhi, the two leaders also shared perspectives on key regional and global issues of mutual interest, including the conflicts in West Asia and the Black Sea region. Prime Minister Modi reiterated that dialogue and diplomacy is the way forward in resolving conflicts and India stood ready to assist in peace efforts. The External Affairs Ministry said in a statement that Prime Minister Modi and President Putin welcomed Russia's International Industrial Exhibition InnoProm India. President Putin invited Prime Minister to visit Russia for the 24th India-Russia Annual Summit. Prime Minister accepted the invitation. Mr. Modi gifted Mr. Putin a Russian translation of the Thirukkural, the ancient Tamil classic by poet-philosopher Thiruvalluvar, during their meeting. During his bilateral meeting with Iranian President Masoud Pezeshkian, Prime Minister Modi exchanged views on recent developments in West Asia. Mr. Modi reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi also underscored the need for continued efforts

दोस्तों समय हो गया है 4:11 और अरुणिमा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए गीतों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त वंदना चुग। सुप्रभात।

हमराज फिल्म से ये गीत आपने सुना, महेंद्र कपूर का गाया हुआ। साहिर लुधियानवी का गीत था, रवि का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे जंजीर फिल्म से, मन्ना डे का गाया हुआ। गुलशन बावरा ने गीत को लिखा है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

तेरे मेरे मिलन की ये रहना, अभिमान फिल्म से ये गीत आपने सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ। मजरू सुल्तानपुरी ने गीत को लिखा था और आर डी बर्मन के बनाए हुए धुन थे। अगला गीत आप सुनेंगे दुल्हन वही जो पियावन भाए, ये सुदास बनाश्री सेन गुप्ता और हेमलता का गाया हुआ गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है अरुणिमा।

प्यार की 2-4 दिन। सही बात है दोस्तों, भले ही जिंदगी छोटी हो लेकिन अच्छी और खुशियों भरी होनी चाहिए। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने ये गीत सुना, सच्चाई फिल्म से। राजेंद्र कृष्ण की रचना थी और शंकर जयकिशन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे संघर्ष फिल्म से, लता मंगेशकर का गाया हुआ, शकील बदायूं की रचना है और नौशाद का संगीत।

दोस्तों, अब आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक बार नदी और सागर में बात हुई तो नदी कहने लगी सागर से, तुमसे ही मैं जीवन पाऊँ, सो आकर तुम में मिल जाऊँ। सागर बोला, नदिया बोलो, कब तक ये कर पाओगी, मेरे खारेपन को आखिर कब तक गले लगाओगी। नदिया बोली, मैं मीठी हूँ, मीठा जल ही लाऊंगी, जब तक तुम मीठे ना होते तब तक फिर आऊंगे। और हम भी ऐसे ही अपने स्वभाव को बनाए और सामने वाले के स्वभाव को भी बदलने की कोशिश करें।

मुकेश की आवाज़ में आपने ये गीत सुना अनोखी रात फिल्म से। इंदिवर की रचना थी और रोशन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे शक्ति फिल्म से, महेंद्र कपूर का गाया हुआ। आनंद बख्शी की रचना है और आर डी बर्मन का संगीत।

दोस्तों, हम तो चाहते हैं कि आपकी भी सारी तमन्नाएं, ख्वाहिशें पूरी हो जानी चाहें। और अब मेरा मन कह रहा है कि माँ पर भी आपको एक गीत सुनवाया जाए जो हमारे लिए भगवान का दूसरा रूप होती है।

लता मंगेशकर की आवाज में आपने ये गीत सुना राजा और रंग फिल्म से। आनंद बख्शी की बेजोड़ रचना थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे तकदीर फिल्म से, लता मंगेशकर और सुलक्षणा पंडित की आवाज में। आनंद बख्शी की रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

दोस्तों, बच्चों को खिलौनों से ज़्यादा अपने माता पिता से प्यार होता है और उन्हें माँ बाप के साथ लगाव भी होता है। और इस गीत के साथ ही आज का अरुणिमा कार्यक्रम अब संपन्न हो

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का आरंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद मजबूत बनाना विषय पर सत्र से होगा। प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी

0: आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेयरर्स सेफ हो। और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेयरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्र अध्यक्षों ने भी संबोधित किया। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर आज सुबह 9 बजे से 30 मिनट से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवागमन लागू रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपनी यात्रा की योजना पहले निर्धारित करने और अतिरिक्त समय रखने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रूपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। इस पेंशन योजना का उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक स्थिरता और सम्मान के साथ जीवन जीने में सहायता देना है। भारत ने ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और एचपीवी संक्रमण और एचपीवी से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार ने शहरी क्षेत्रों में सभी को आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य में तेजी लाने और योजना क्रियान्वयन को गति देने के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना द्वितीय चरण के तहत कुल 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में शहरी विकास विभाग सचिव सत्येंद्र सिंह की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की 9वीं बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह पक्की कर ली है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। वहीं महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में कल दुबई में भारतीय टीम का सामना पिछले चैंपियन श्रीलंका से होगा। श्रीलंका की टीम पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर, और अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भक्ति रचना से। और कार्यक्रम का नाम आपको मालूम ही है, भोर सुहानी। और अपने दोस्त वंदना चुक्का कीजिए प्यार भरा नमस्कार।

द बर्निंग ट्रेन। इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना, पद्मिनी कोल्हापुरी और साथियों का गाया हुआ। साहिल लुधियानवी की रचना थी और आर डी बर्मन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे पूर्णिमा फिल्म से, रचना सुमन कल्याणपुर की है और भरत व्यास ने गीत को लिखा है और धुन तैयार की है कल्याण जी आनंद जी ने।

दोस्तों, जब हम किसी से मुस्कुराकर मिलते हैं तो सामने वाले को भी पॉजिटिविटी मिलती है, और किसी का हालचाल पूछ लेने से किसी को ऊर्जा मिलती हो तो आपको उसके लिए ऊर्जा स्रोत जरूर बन जाना चाहिए।

अनाड़ी फिल्म से अभी आपने गीत सुना, मुकेश का गाया हुआ, शैलेंद्र की रचना थी और शंकर जयकिशन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे तीसरी कसम फिल्म से, ये गीत मुकेश की आवाज़ में है, हसरत जयपुरी की रचना है और शंकर जयकिशन का संगीत।

सच में कई बार बहुत ही हैरानी होती है। जब जब दुनिया को हम देखते हैं तो ऐसे ही मन में ख्याल आते हैं कि दुनिया क्यों बनाई हो गई।